0: घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा, आपके माता पिता का रिएक्शन कैसा रहा?
1: काफ़ी सब खुशी हैं, लेकिन घर वालों का कहना तो यही है कि मेडल जब तक नहीं आएगा तब तो कुछ नहीं,
0: तब तक
1: चांस।
0: कुछ नहीं है,
1: हाँ, तो घर वाले यही कह रहे हैं कि मेडल लाओ तब सही है, नहीं तो
0: तब बात बनेगी, उससे पहले नहीं।
1: नहीं, केवल मेडल।
0: चलिए बहुत अच्छा है। तो बजरंग जी से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी है, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बजरंग जी, अब हम आते हैं आपके आगामी लक्ष्यों के बारे में। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपके आगामी लक्ष्य क्या-क्या हैं।
1: देखिए, बचपन से ही मेरा जो अभी बताया है कि टारगेट यही रहा है कि जैसे कहते नहीं कि 100 मीटर में कोई ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सकता, इंडिया के लिए नहीं खेल सकता, तो उनको रॉन्ग प्रूव करते हुए मेरा टारगेट है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें। जो उसन बोल्ट ने जो 9.58 का जो बैरियर बनाया है अभी तक टूटा नहीं है। जमैका के उसन बोल्ट 2012 लंदन डायमंड लीग में उन्होंने 9.58 का समय दिया, तो उस बैरियर को तोड़ना है। उसके लिए लगातार मेहनत, स्ट्रगल, सारी चीज़ें हो रही हैं और उस बैरियर को पाना हम चाहते हैं। हमारा यही एम, यही टारगेट है कि मैं भारत के झोली में एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर रखूं कि इंडिया के नाम 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
0: अच्छा, हमारी शुभकामनाएं यही रहेंगी कि आप भारत के लिए पदक लाएं और विश्व रिकॉर्ड को भारत के नाम करें, और जो 9.58 सेकंड का यूसेन बोल्ट जी का रिकॉर्ड है, आप उसको सुधार के और अच्छा करें, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। और हम यही शुभकामनाएं देंगे कि आप इसमें जरूर सफल हों। बजरंग पांडे जी, आपसे बात हो गई आपके लक्ष्य के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो नए खिलाड़ी हैं, संघर्ष का दौर था, जो गाँव में आप जैसे रेत में दौड़ते थे, ऐसे बहुत बच्चे आज भी दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे कि किस तरह वो संघर्ष करें, किस तरह वो मोटिवेट हों कि वो भी आपकी तरह एक सफल करियर बना सकें।
1: देखिए, हम सभी एथलीट से यही कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले एक टारगेट बनाइए, एक फील्ड चुनिए, आपको इसमें अपना करियर चुनना है। जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, 1 साल 2 साल उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो अपना टारगेट छोड़ के दूसरा टारगेट ले लेते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि एक टारगेट बनाइए, उसमें आप अपना 100% दीजिए। 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, लेकिन आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
0: पांडे जी, आपसे ढेर सारी बातें हुई, लेकिन एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में काफ़ी देर से घूम रहा है कि जैसे आपने बताया गुरिंदर वीर सिंह जी के बारे में कि उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, और यूसेन बोल्ट जी ने के नाम पे विश्व रिकॉर्ड है, तो इन सब के बीच में एक

0: प्रश्न जो सबसे रहता है कि क्या अंतर होता है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ का अंतर होता है, कोई टेक्निक का अंतर होता है या मेंटल स्ट्रेंथ का अंतर होता है?
1: देखिए 100 मीटर जो 100% जाता है मेंटल स्ट्रेंथ पे। अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग आ रही है मेरी, अगर कोई हमारे सामने इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खड़ा हो जाए ट्रैक पे, हमें उसके साथ कंपटीशन करना है, उस समय मैं उससे परफेक्ट हूँ, लेकिन मेरा मेंटल स्ट्रांग कर रहा है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं उससे नहीं जीत सकता। तो आप वहाँ पे परफेक्ट होने के बावजूद भी वहाँ हार जाएंगे, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। इसीलिए कोच कहते हैं कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, भले वो विश्व विजेता हो, आप उससे कम परफेक्ट होकर भी अगर आपका मेंटली स्ट्रांग कहता है कि आप जीत सकते हैं, तो आप जीत सकते हैं।
0: अर्थात उस समय जो फिजिकल स्ट्रेंथ और टेक्निक्स के मामले में लगभग सब बराबर ही होते हैं, बस वो अंतर जो होता है वो मानसिक ताकत का, मेंटल स्ट्रेंथ का अंतर होता है,
1: हमारी
0: चाहे
1: परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है अगर हम डाउन हो गए तो।
0: आपका आत्मविश्वास अगर कम हुआ तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी।
1: अंदर से वही घबराहट होने लगती है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, बड़े बड़े एथलीट हैं।
0: पांडे जी, आपने अपने सफर के बारे में हमसे बातें की, हमें आशा है कि हमारे जो श्रोतागण हैं और खासकर वो बच्चे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी बातों से जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये आशा करते हैं कि अगली बार जब आप आइएगा तो भारत के लिए गोल्ड लेके आइएगा।
1: देखिए
0: धन्यवाद।
1: हम पूरा प्रयास करें कि हम गोल्ड नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें, और मेरा यही पूरा प्रयास रहेगा।
0: हमारी शुभकामनाएं रहेंगी पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। तू है

एथलीट बजरंग पांडे से अभय कांत तिवारी की बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इसका दूसरा भाग, वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज

कलाकार हैं दीनानाथ यादव और साथी, जगत बहादुर यादव और साथी, राजमणि धमाल और साथी। सबसे पहले सुनिए दीनानाथ यादव और साथी के स्वर में ये लाचारी।

दीनानाथ यादव और साथी के सुर में अभी आपने सुना ये निर्गुण। लीजिए सुनिए जगत बहादुर यादव और साथी के सुर में झूमर।

दीनानाथ यादव और साथी के सुर में अभी आपने सुना ये निर्गुण। लीजिए सुनिए जगत बहादुर यादव और साथी के सुर में झूमर।

जगत बहादुर यादव और साथी के स्वर में अभी आपने सुना ये लचारी। लीजिए सुनिए राजमणि धमाल और साथी के स्वर में देवी गीत।

इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार।

अमित त्रिवेदी बचपन से ही संगीत के प्रति बेहद रुचि रखते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई म्यूजिक बैंड्स के साथ काम किया और स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का सपना देखा। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें असली पहचान मिली फिल्म देव डी से। इस फिल्म के संगीत से, इस फिल्म के गानों ने युवाओं के बीच एक नया ट्रेंड बना दिया और अमित त्रिवेदी रातों रात मशहूर होते चले गए।

मुंबई की गलियों में पला एक सपना। दिल में संगीत, आंखों में रोशनी थी अपनी। आसान नहीं था ये रास्ता, कई रातें शुरू में ढली, कई दिन उम्मीद में बीते, पर जो दिल से संगीत को अपना बना ले, उसके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। ऐसी ही दास्तां है अमित त्रिवेदी की।

एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्र थे अमित त्रिवेदी पर। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन EIR ऐप

अमित त्रिवेदी की खासियत है कि हर फिल्म के लिए अलग और प्रयोगात्मक संगीत बनाते हैं, जो कहानी के मूड के साथ पूरी तरह मेल खाती है।

0: लड़के
1: खुशियों संगे लावी हर खाए हयु हाय हाय आजानी के।
2: अब एक बात आपके चॉइस पर छोड़ते हैं कि अमित त्रिवेदी एक बेहतर प्लेबैक सिंगर हैं या एक बेहतर म्यूजिक कंपोजर।

अमित त्रिवेदी को जिस फिल्म की म्यूजिक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन मिला, उस फिल्म का नाम था देवडी। इसके अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया गया और उन्होंने ये अवार्ड भी हासिल किया।

अमित त्रिवेदी को बॉलीवुड में नए और प्रयोगात्मक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनके गाने यूथ के बीच खासे लोकप्रिय हैं और वे आधुनिक बॉलीवुड संगीत के सबसे रचनात्मक संगीतकारों में से एक माने जाते हैं।

जाने माने प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी पर केंद्रित था आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने वो थे आयशा फिल्म का गाना, अमित त्रिवेदी और साथियों की आवाज़ों में, कार्यक्रम का दूसरा गीत हमने लिया था घन चक्कर फिल्म से, अमित त्रिवेदी की आवाज़ थी इस गाने में। अंधाधुन फिल्म के गाने की अमित त्रिवेदी की आवाज़, बधाई हो फिल्म का गाना आपने सुना नेहा कक्कड़ और गुरु रंधावा की आवाज़ों में। कार्यक्रम का पांचवा गीत हमने लिया था काई पोचे फिल्म से, जिसे गाया था दिव्य कुमार और श्रुति पाठक ने। इसके बाद हमने आपको सुनाया डियर जिंदगी फिल्म का गाना जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की आवाज़ों में। अगला गीत भावेश जोशी सुपर हीरो फिल्म से हमने दिया था, जिसे गाया था अमित त्रिवेदी ने। और कार्यक्रम का ये जो आखिरी गीत आप सुन रहे हैं ये हमने दिया उड़ान फिल्म से, अमित त्रिवेदी की आवाज़ थी। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त उज्ज्वल सिन्हा को इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

जब जब बहार आई तेरा ख्याल आया, जब जब बहार आई तेरा ख्याल आया, फूलों ने मुस्कुराकर

सावन की फुहारों ने ये पैगाम दिया, सावन की फुहारों ने ये पैगाम दिया, मोहब्बत ने कुदरत का खूबसूरत नाम दिया।

जब भी बरसती हैं सावन की प्यारी फुहारें, जब भी बरसती हैं सावन की प्यारी फुहारें, लगता है तेरे प्यार की छू रही है मुझे पुकारे।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वर्मा मलिक की गीत रचना, उत्तम जगदीश का संगीत था, फिल्म वारिस का युगल गीत था ये।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में दिल है तुम्हारा फिल्म का ये टाइटल ट्रैक।

बहार आई तो गुलशन में नई रौनक छा गई, बहार आई तो गुलशन में नई रौनक छा गई, हर कली की मुस्कुराहट में मोहब्बत समा गई।

हवा में घुल गई जब फूलों की महक, हवा में घुल गई जब फूलों की महक, तो लगा दिल को जैसे जिंदगी गई चहक। बहार के रंगों में सज गया ये जहां, बहार के रंगों में सज गया ये जहां, जैसे रब ने खुद लिखा हो

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर एप। इसके अलावा आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को आप डीडी फ्री डिश और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में ये सदाबहार गाना आप सुन रहे हैं, मजरूह का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

गमों की धूप छट गई, आई है बहार, हर दिल में खिल उठी मोहब्बत की बहार।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 8004926250, यानी 8004926250। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर 12 बज रहे हैं। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

0: की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They also viewed the temple's intricate carvings before witnessing the ongoing conservation efforts being supported through India-Indonesia cooperation. Addressing a gathering at the Prambanan Temple in Yogyakarta in Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hathkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlingas, holds special significance, with him having direct responsibility for its development.
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart, the Honourable Anthony Albanese.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत के रात्रिकालीन कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आएंगे रोज की तरह 12:30 पर। गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी चर्चा खत। इसके अलावा निखार क्रम में विषय होगा दो मुहे बालों का उपचार। सेहत ज्ञान के अंतर्गत गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में ही महिलाएं सुनेंगी पोषक तत्वों से भरपूर परवल के बारे में। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं रोज की तरह 5:15 से।

पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे दीनानाथ यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा सियाराम मिश्र से नीति वचन सुनवाया जाएगा। हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे आप सुन पाएंगे शाम 7:31 से। वाचन स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। सबरस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे, रात्रि 8 बजे और रात्रि 10 बजे। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की रूपरेखा।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से लीजिए, अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। राम नरेश निवासी ग्राम गनपा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी सूचित करते हैं कि पूनम मौर्य 13 मई 2026 से ग्राम गनपा से लापता हैं। पूनम मौर्य के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 19 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और इकहरा बदन है। पूनम मौर्य के विषय में कोई भी सूचना आप थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को दे सकते हैं। सिकंदर अली निवासी ग्राम पिपरी थाना सराय ममरेज प्रयागराज सूचित करते हैं कि नसरीन 16 मई 2026 6 बजे से अपने निवास स्थल ग्राम पिपरी से अपने मायके के लिए जाने के बाद से लापता हैं। नसरीन के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 36 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। नसरीन के विषय में कोई भी सूचना आप थाना ममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को दे सकते हैं। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी पर बजाया राग वृंदावनी सारंग। वादक कलाकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

0: राग वृंदावनी सारंग में बांसुरी वादन अभी आपने सुना। वादक कलाकार थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
1: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके फरमाइशी गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
2: हाँ नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार।
2: हाँ मैडम, मैं रमेश बाबू गुप्ता बोल रहा हूँ मैडम। रहने वाले हैं जिला प्रयागराज, गांव का नाम है अक्षरामपुर। इसमें बात कर रहे हैं मुमरा कल्याण फाटा मुंबई से।
1: जी जी, मुंबई से। तो भाई मुंबई का क्या हाल चाल है रमेश जी?
2: मुंबई का मेरा हाल चाल सब ठीक ठाक है, बारिश हो रही है।
1: अच्छा
2: हाँ,
1: चलिए बहुत खुशनुमा मौसम हो गया। जी जी जी, चलिए अच्छी बात है। आप बारिश के मजे लीजिए और हम आपकी पसंद के गानों को भी सुनवा देते हैं। तो कौन सा गाना आप पसंद किया है आपने?
2: मैडम आज हमें गाना सुनवाइए, फिल्म का नाम है त्रिनेत्र।
1: त्रिनेत्र, हाँ जी बताइए।
2: गाने बोले मैं तुझे छोड़ के गाँव

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितेश आर्या है
0: जी। नितेश जी,
1: फिल्म का नाम हम आपके दिल में रहते हैं। गाने बोले जो तेरे गाले पे काला तिल है।
0: अच्छा, जरा आंखों में काजल लगा लो, यही पहली लाइन है इस गाने की।
1: जी जी शुरुआती लाइन है
0: जी। अनिल कपूर और काजोल के ऊपर फिल्माया गया है
1: जी। अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है, बहुत
0: जी
1: अच्छा
0: जी
1: गाना है।
0: तो भाई आपकी इस पसंद को हम पूरा करने जा रहे हैं। नीतीश जी, किसी का नाम तो नहीं लेना आपने?
1: हमारे विकास जी हैं।
0: अच्छा, विकास जी।
1: जी जी वो कहीं भी अपने ट्रक लेकर जाते, पर आपका प्रोग्राम उनका साथ रहता, वो बताते हैं जब भी मिलते हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि वो जगह जगह जाते हैं लेकिन प्रयागराज केंद्र के कार्यक्रम सुनना नहीं भूलते हैं,
1: क्योंकि हमारा प्रयागराज केंद्र कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। तो आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गाना।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव मगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी नमस्कार प्रेमचंद जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। तो बताइए आज कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है वीर जारा।
0: वीर जारा फिल्म का कौन सा गीत है?
1: और गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं।
2: तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
1: सोनू जायसवाल थाईपुर प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: धुरंधर का।
0: धुरंधर फिल्म की गीत की फरमाइश की है प्रतापगढ़ से सोनू जी ने। तो सोनू जी, किसी का नाम तो नहीं लेना आपने?
1: सचिन जायसवाल, सार्थक जायसवाल, त्रिभुवन, दिनेश।
0: तो अब हम सुनवाते हैं सोनू जी की पसंद का धुरंधर फिल्म का ये गाना।

0: फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते
0: मैम। नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं गाँव फूपिया मधेपुरा जिला
0: जी। गाँव फूपिया से रोशनी जी हमारे साथ हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहती, फिल्म का नाम और बोल बता दीजिए।
1: जमाना दीवाना फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। गाने के बोल हैं जमाने को अब तक नहीं है पता, कहीं शोर मच गया तो। मैम हमारी दीदी सुन रही है आपको दहिला मो प्रतापगढ़ से। दीदी का नाम है शांति और जीजू का नाम है सुनील। उनकी दो बेटी हैं आशीष सागर आबी सागर। और दूसरी दीदी सुन रही है आपको प्रतापगढ़ से, वो भी सुन रही है। उनका नाम है प्रीति और शेखर। जीजू का नाम है और हमारे भाई बहन सूरज कुमार, संदीप कुमार, मंदिर कुमार, सुशांत कुमार, छोटी बहन पूजा। और हमारे मम्मी पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं और हम और आप और सभी सुनने वाले श्रोता मित्र।
0: ये बताइए आपकी सारी बहनें ये कार्यक्रम सुनती तो आप उनको प्रेरित नहीं करती कि भाई आप भी फोन मिला लिया करिए हेलो फरमाइश कार्यक्रम में?
1: वो सुनती हैं, आई थी हमारे घर पे तो हम उन्हें बताए तो बोले हम भी सुनेंगे।
0: अच्छा।
1: और सुनती हैं, कॉल लगाती हैं तो उनकी कॉल नहीं लग पा रही है।
0: अच्छा अच्छा, हम
1: बोले आप ट्राई करते रहो।
0: ट्राई करते रहिए जी, हाँ जरूर लगेगी। देखिए रोशनी जी की तो लग जाती है कॉल।
1: जी मैम मेरी तो लग जाती है। उस दिन आई थी तो उस दिन आप

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बज रहे हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी।

0: पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अब भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him, having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan Temple had also given him the opportunity to initiate renovation efforts, describing it as a matter of great fortune.
2: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex, ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain, aur ye UNESCO ka World Heritage hai, duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye, hame kahin na kahin Bharat ki sanskrutik virasat ke darshan hote hain. Ye pure Southeast Asia ka dusra sabse bada hamari virasat ki pehchan hai.
1: The Prime Minister has since departed for Australia. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Mr. Modi will also address a large gathering of the Indian diaspora. The Enforcement Directorate is conducting search operations at 5 premises in Delhi, NCR, in connection with the ongoing investigations into 3 cases involving cheating of home buyers through subvention schemes. The investigation conducted by CBI revealed that the builders have cheated the home buyers and investors in the name of subvention schemes. It is further revealed that the builders floated no EMI till possession schemes, whereby the home buyers availed housing loans and booked flats. However, even after the lapse of several years, possession of the flats has not been delivered to them, causing wrongful loss to the home buyers. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government.

0: to support the Maharashtra government in dealing with the situation. Several parts of Maharashtra have been affected by heavy rainfall over the past few days. In Jammu and Kashmir, police today said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapura area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with Army and the CRPF. Talking to Akashwani News, Inspector General of Police V.K. Birde said a body has been found with arms and ammunition at the spot and the identity is being ascertained. Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormuzgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. Meanwhile, Bahrain's Ministry of Interior has urged residents to take shelter after warning sirens sounded across the country. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atalanta to enter the quarterfinals of the tournament. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया। यह स्कीम 12 लाख असातजा और गैर तदरीसी अमले और उनके ज़ेर किफालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करती है।
2: 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थाई या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा।
1: उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 10 लाख असातजा और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के समाजी तहफ्फुज़ के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए। वजीर आला ने यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1.10 करोड़ तालिब इल्म के वालदैन के खातों में DBT के ज़रिए 1200 रुपये फ़ी तालिब इल्म मुंतकिल किए। इसके अलावा वज़ीर आला ने कौमी सतह पर मुंतखब होने वाले क्लीन एंड ग्रीन स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी एजाज से नवाजा। वज़ीर आला आज चित्रकूट और मानिकपुर असम्बली हलकों में 951 करोड़ रुपये के 124 अवामी बहबूद के मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने काम करने के अंदाज से तरक्की को तेज़ किया है। वज़ीर आला ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपये के 99 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर पूर्वांचल को तरक्की से जोड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मिश्रा की सदारत में कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में खरीफ सीजन की पेशरफ्त और मईशत के दीगर शोबों पर अलनीनों के मुमकिन असरात की रोशनी में की गई तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए और मानसून या ताखिर से होने वाले मानसून के असरात का अंदाज़ा रियासतों के साथ मिलकर उन अजला पर किया जाए जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर असलाही इकदाम किए जा सकें। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हसास अजला में पीने के पानी के मुनासिब दस्तियाबी

0: लुप लुप। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर, मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर, बरसात का मौसम है शायद अपनापन पनप जाए। बहनो, एहसास की डोर में बंधा होता है हर रिश्ता। ये एहसास ही तो है जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं, और ऐसे ही एहसासों की डोर से बंधा है हमारा और आपका ये रिश्ता। तभी तो हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी लेकर। तो स्वीकार करें निकहत
1: और संगीता का नमस्कार। बहनों, घड़ी में समय हुआ है ठीक 1:15। ये वो समय होता है जब सुबह की भाग दौड़ थम जाती है, रसोई का काम समेट लिया जाता है और हम सब सुकून की सांस लेना चाहते हैं। तो बस अब अपनी थकान को एक तरफ रख दीजिए और अगले 45 मिनटों के लिए बन जाइए हमारे इस कार्यक्रम की हम सफर।
0: बिल्कुल। तो बहनों, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सेहत और सौंदर्य की, और हमारा खास सेगमेंट शब्द, बातें और गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो संगीता भाई, आज का जो मौसम है कितना खूबसूरत, कितना सुहावना है, है ना? और जब मैं यहाँ आ रही थी, स्टूडियो आ रही थी, तो रास्ते में जो बारिश की बूंदे है ना, मुंह में ऐसे पड़ी थी, बिल्कुल ताजगी का एकदम एहसास होने लगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम जितनी उमस को बर्दाश्त कर रहे थे, जितनी तेज गर्मी थी, तो हम उससे बेचैन थे, है ना? और जब ये बारिश की बरसती हुई जो बूंदे हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू जब हम मिली, तो सच मानिए बहनों, ये मौसम दिल के उन कोनों को छू लेता है जहाँ पुरानी यादें छिपी होती हैं। आज के इस डिजिटल युग में जब हम एक क्लिक पर मैसेज भेज देते हैं, तब इस सुहावने मौसम को देखकर मन बरबसी उस दौर में चला जाता है जहां बारिश की बूंदों के बीच किसी के खत का इंतजार हुआ करता था। डाकिया बाबू की साइकिल की घंटी और हाथ में बंधा हुआ वो कागज का टुकड़ा, जिसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपनों के जज्बात होते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए, मौसम की इस अंगड़ाई के

0: साथ हम रुख करते हैं अपने पहले और खास सेगमेंट शब्द बातें और गीत की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे अल्फाज, जज्बात और आवाज के उस अनूठे संगम की जो कभी एक खत के रूप में लोगों के दिलों तक पहुंचता था।
1: बिल्कुल निकहत, खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि संवेदनाओं, भावनाओं और बीते समय का एक जीवंत दस्तावेज होते थे।
0: बिल्कुल।
1: और आज के समय में जहाँ संदेश पलक झपकते पहुंच जाते हैं, वहीं खत के माध्यम से शब्दों और यादों का सफर तय करना एक बेहद सुकून भरा और भावनात्मक अनुभव होता है।
0: बिल्कुल सही कहा संगीता तुमने। और देखो, आज से कुछ दशक पहले जब संवाद का माध्यम केवल चिट्ठियां हुआ करती थी, तब खत लिखना और उनका इंतजार करना भी एक कला थी। डाकिया की साइकिल की घंटी, खाकी लिफाफा और उस पर लिखे प्रियजन के अक्षर, ये सब अपने आप में एक रोमांच और अनूठा एहसास होता था। खत लिखते समय शब्दों को बहुत सोच समझ कर पन्नों पर उतारा जाता था, मानो कोई लेखक अपने दिल का एक हिस्सा कलम के जरिए दूसरों तक पहुंचा रहा हो।
1: बिल्कुल। और जब हम किसी पुराने खत को दोबारा पढ़ते हैं ना निकहत, तो ऐसा लगता है जैसे हम पुराने गुजरे हुए वक्त में पहुंच गए हों। स्याही की वो महक, कागज का स्पर्श और लिखे गए अल्फाज उस बीते दौर की हर छोटी बड़ी यादों को ताजा कर देते हैं। खतों को दर्ज जो स्मृति होती थी ना, वो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि वो एक ऐसी धाति होती है जिन्हें सहेज कर रखना हर युग में दिल को छू लेने वाला अनुभव रहा है।
0: बिल्कुल संगीता। और देखो, खत दूरियों को मिटाने का सबसे बेहतरीन जरिया हुआ करते थे। चाहे माँ की ममता हो, दोस्तों की मस्ती हो या प्रियतम का प्रेम, हर जज्बात खतों के लिफाफे में कैद होकर अपनी मंजिल तक पहुँचता था। एक पुराने खत को संभाल कर रखना किसी खजाने को सहेज कर रखने जैसा होता था, जो हमें अपनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की याद दिलाता है। तो इन्हीं खूबसूरत पलों की याद में हम आपकी नजर करते हैं एक ऐसा गीत पहनो इन अल्फाजों के साथ, कि तेरे खत में इश्क की गवाही आज भी है, तेरे खत में इश्क की गवाही आज भी है, हर्फ धुंधले हो गए पर स्याही आज भी है।

0: निखत, खत सिर्फ संवाद का साधन नहीं होता है बल्कि ये रिश्तों को जिंदा रखने की चाबी है।
1: बिल्कुल,
0: रिश्तों में जुड़ाव का एक सशक्त माध्यम है खत। खत और रिश्ते दोनों ही जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से हैं। खत भावनाओं को व्यक्त करते हैं और रिश्ते हमें जीने का हौसला देते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और दोस्तों को खत के जरिए जज्बात जाहिर कीजिए।
2: और आधुनिकता की इस दौड़ में मैसेज और ईमेल की रफ्तार संगीता इतनी तेज हो गई है, या यूं कहें कि आजकल तो हमें फोन से या वीडियो कॉल पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे को देखकर बात करने की सुविधा प्राप्त है।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन इससे में वो जो ठहराव, जो आत्मीयता है, वो होती थी जो खत के जरिए, वो गायब है। जो हाथ से लिखे पत्र में होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा, और देखो डिजिटल संदेश गायब हो सकते हैं, लेकिन एक खत जो है ना, वो सालों साल महफूज रहता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि किसी भी स्वस्थ रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है।
0: निखत, रिश्ते चाहे उलझे हुए हों या मजबूत, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कलम और कागज का विकल्प हमेशा सबसे अलग और हृदयस्पर्शी रहा है। हाथ से लिखे खत और मानवीय रिश्तों के बीच एक गहरा और आत्मीय संबंध होता है। कागज पर स्याही से उकेरे गए शब्द केवल संदेश नहीं, बल्कि भेजने वाले की भावनाएं, यादें और उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जो आधुनिक डिजिटल युग में भी अनमोल हैं।
2: और देखो, खत और रिश्तों के अनूठे बंधन पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी को खत लिखते हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो या कोई दूर का रिश्तेदार, तो हम अपना समय और एकाग्रता उन्हें समर्पित करते हैं। स्याही के माध्यम से कागज पर उतरा हर एक शब्द रिश्ते की गहराई को बयां करता है ना?
0: और निखत, जब उस खत को पढ़ा जाता है तो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसकी लिखावट, कागज की महक और अपनों की उपस्थिति का एहसास होता है। और पत्र लिखने वाले ने जिस एकाग्रता से पत्र लिखा होगा, वो इस बात का प्रमाण है कि लिखने वाले ने अपने लिखे आपके लिए समय निकाला है। और जो रिश्ते की गहराई को दर्शाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो पत्र लिखे जाते थे पुराने जमाने में, जो पत्र लिखे जाते थे ना, जो वो सहेज कर रखा जाता था, जो पीढ़ियों तक रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखने का काम करते थे। किसी प्रियजन के साथ खत को दोबारा पढ़ना, उसके साथ बिताए गए पलों को फिर से जीने का एहसास होता था।
2: बिल्कुल। और देखो, जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका जवाब पाने का इंतजार भी तो करते हैं ना।
0: बिल्कुल।
2: हम लोग इंतजार करते हैं कि भाई जब हमने खत लिखा है तो कब हमें रिप्लाई मिलेगा, कब कुछ खत आएगा तो हमें पता चलेगा। तो ये जो हमें धैर्य सिखाता है और ये इंतजार रिश्तों में उत्सुकता और मिठास बनाए रखता है। और कभी कभी तो संगीता अपने अनूठे बंधन की मजबूती के लिए खूबसूरत फूलों या फूलों की पंखुड़ियों को लिफाफे में रख कर पहुँचाने का प्रयास भी किया जाता है।

करता था, जिससे उनका जो रिश्ता है ना फूलों की तरह महक उठे। कुछ इस तरह कि वो जो तुमने खत लिखा था मुझको, वो जो तुमने खत लिखा था मुझको, बसा है दिल के चमन में बहार की तरह।

0: तो भाई खत की बात हो रही है संगीता, तो एक बात मैं तुमसे पूछूं,
1: तो
0: क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुमने अपने हाथों से किसी को खत कब लिखा था, या डाकिया जो हमारे सुख दुख का साथी हुआ करता था उसका इंतजार तुमने खत पाने के लिए कब किया था, कुछ याद है तुम्हें?
1: हाँ बिल्कुल याद है निकहत, मैंने आखिरी बार जो खत लिखा था वो अपनी मम्मी को लिखा था।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तब एक एहसास था कि मतलब मम्मी से दूर होने का, तो वो एक कुछ दर्द भी था कि भाई मम्मी से दूर हो गए हैं, पापा से दूर हो गए हैं, तो तकलीफ होती थी कि अब मम्मी से बातें कैसे करें।
0: हाँ,
1: तो भाई बातें करने का जो जरिया था ना, वो खत था।
0: हाँ,
1: तो मैं अपनी उसमें सारी बातें लिखती थी,
0: अपना हाल
1: अपना हाल चाल लिखती थी,
0: किस टाइम तुम क्या काम करती हो, क्या नहीं करती हो, किस टाइम सो के उठती हो, जागती हो, है ना,
1: ये सारी बातें लिखती थी, और क्या क्या मैंने किया है, क्या मेरे साथ हुआ है। और मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी क्या आपको मेरी याद नहीं आती है, तो मम्मी भी मुझे रिप्लाई करती थी खत के द्वारा कि भाई बिटिया तुम चली गई हो, तुम्हारी जो चहक थी, जो महक थी, वो आज

0: भी
1: घर के आंगन में,
0: हुई, हाँ, घर के आंगन में लगता है कि आज भी तुम चहक रही हो। हाँ। वो प्यारा सा तुम्हारा जो चेहरा था हंसता खिलखिलाता हुआ, आज भी वो नजरों के सामने आता है तो मन जो होता है ना थोड़ा सा भर आता है, आंखें भर आती है। लेकिन जब मम्मी की ये बातें खत के द्वारा मुझ तक पहुंचती थी ना निकट, तो मेरी आंखें भी भर आती थी और वो जो जज्बात थे ना वो उस खत के द्वारा मेरे मम्मी के लिए और मम्मी का मेरे लिए होता था। और मैं उन खतों को आज भी संभाल करके रखी हूँ। मम्मी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके जो याद, उनकी जो यादें थी वो आज भी, उनकी खुशबू, उनकी जो भावनाएं थी वो उस खत में आज भी मेरे पास रखी हुई हैं।
1: मतलब तुम जब भी उस खत को, तुम हमेशा पढ़ती ही होगी उस खत को?
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो लगता होगा कि बस मम्मी सामने बैठी हुई है, उनसे मेरी बात हो रही है।
0: बिल्कुल, ये ऐसा ही लगता है कि मम्मी की जो वो बातें थी आज भी मुझे याद आती है वो खत के द्वारा। जब भी मैं बैठती हूँ, अकेले में होती हूँ, जब कोई नहीं होता है, तो मैं उन खतों को लेकर के बैठती हूँ और एक एक एक एक करके मैं पढ़ती हूँ और मम्मी की बातें याद करती हूँ। कि मतलब मम्मी अपनी गुड़िया कहती थी मुझे, प्यारी प्यारी राजदुलारी कहती थी, पूरा वो लिख करके मुझे भेजती थी।
1: उसी तरीके से लिखती थी,
0: उसी तरीके से
1: जैसे वो तुम्हें बुलाया करती थी वैसे ही,
0: वैसे ही लिखती थी। बिल्कुल, तो ये मतलब एहसास जो था ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि मम्मी आज भी मेरे साथ है निकट।
1: और यही तो खासियत है संगीता खतों की, जैसे कि अभी हमने कहा कि डिजिटल युग में जो मैसेज हमारे पास आते हैं वो तो डिलीट हो जाते हैं, लेकिन खत सालों साल हमारे अलमारी में, हमारे संदूक में पड़े ही रहते हैं, अपनी खुशबू को बिखेरते ही रहते हैं, है ना? तो खतों की तो भाई कुछ और ही बात थी, क्योंकि खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता था बल्कि उसमें स्याही के साथ साथ भावनाएं, उम्मीदें और प्यार भी लिपटा होता था, जिसे हम हमेशा सहेज कर रखते थे।
0: और खत की यही तो खासियत है निकट, जो बात फोन पर चंद सेकंड में, चंद मिनटों में खत्म हो जाती है ना, खत उसे उम्र भर के लिए सहेज कर रख लेना होता है।
1: बिल्कुल, मतलब हम जो बात फोन पर करते हैं किसी से भी, चाहे हम अपने माता पिता से करें, भाई बहन से करें, दोस्त से करें, बच्चों से करें, तो भाई जब फोन हमने रख दिया बस बातें वो खत्म हो गई,
0: खत्म हो जाती।
1: लेकिन खत पर जो बातें लिखी होती हैं वो तो हमेशा के लिए होती हैं,
0: जब तक यादें होती हैं।
1: हाँ, हमारे पास खत है तब तक हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं, उस दौर में हम वापस जा सकते हैं, उस समय में हम वापस जा सकते
0: अपने
1: हैं।
0: जो हमारे अपने थे जो अब नहीं है हमारे बीच या बाहर रहते हैं, उनको हम याद करते हैं। हाँ। और उनके, उनका जो जज्बात है उनके साथ जुड़ाव जो होता था ना वो बहुत ही खास रखता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, और यही बात मैं कहने भी जा रही हूँ संगीता, कि जब हम खत को सहेज कर रखते हैं और जब भी हमारा मन करता है हम उसमें पढ़ते हैं, तो उसमें जो लिखी बातें होती है ना उसे पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, शब्दों में पिरोया एहसास का दरिया है। उसमें लिखने वालों के जज्बात बात इस तरह से समाये रहते हैं कि पढ़ने वाले के दिल को फिर से वो छू जाते हैं।
0: हाँ।
1: और इतना ही नहीं, कई बार उन खतों से मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही एहसास और जज्बात में पिरोया हुआ ये गीत खूबसूरत सा सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे।

0: निखत तकनीक ने संचार के साधन भले ही बदल दिए हैं, लेकिन खतों की आत्मा आज भी वही है। भले ही हम रोज मैसेज करते हैं, लेकिन खास अवसर पर लिखा गया खत, एक छोटा सा खत जो होता है, वो रिश्तों में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ सकता है ना?
1: बिल्कुल। तो अपने मन में किसी के प्रति उठने वाले मनोभावों को कागज पर लिखकर उन तक पहुंचाइए। और जो पता है संगीता, भी मैं गीत सुन रही थी, जो ना भी बज रहा था गीत के, हमने सनम को खत लिखा, तो ये गीत सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि खत और गीतों का रिश्ता भी तो बहुत गहरा है, होता है ना, क्योंकि दोनों ही सीधे दिल को छू लेते हैं। क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा आपने भाई। कई बार जो खत के साथ साथ जो गीत होते हैं ना, वो भी बहुत ही महत्व होता है। उन गीतों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुछ बातें जो कहकर या बोलकर हम नहीं समझा सकते हैं, वो उन बातों को इस तरह के गीतों के माध्यम से के साथ जो है वो हम बता सकते हैं।
1: बिल्कुल, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कई बातें जो हम खत पर जो है बोलकर या कहकर सामने बैठकर नहीं बता सकते, गीत के माध्यम से वो बात हम समझा सकते हैं ना। तो ऐसे ही एक गीत हम सुनते हैं।

0: तो भाई शब्द, बातें और गीत इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हमने बात की उस टॉपिक पर जो समय की धूल में कहीं खो सा गया है, लेकिन जब भी याद आता है संगीता, दिल को छू लेता है ना।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ, आज हमने बात की उन खतों, उन चिट्ठियों की जो सिर्फ स्याही नहीं बल्कि भावनाएं बहती थी।
1: बिल्कुल। और निखात भाई, खत तो हमने अब खत की बातें कर ली और कार्यक्रम का अब रुख मोड़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत और सौंदर्य की।
0: बिल्कुल, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था अपनी बहनों से कि आज हम सेहत और सौंदर्य की बातें भी अपने कार्यक्रम में करेंगे।
1: बिल्कुल भाई, देखिए निखात, स्वास्थ्य कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जब शरीर, जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ होता है तभी चेहरे पर मुस्कान और जीवन में उत्साह बना रहता है।
0: बिल्कुल संगीता, लेकिन देखो आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। कभी हम अपने बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते तो कभी ऐसी सब्जियों को अपनी थाली से दूर कर देते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं।
1: इसीलिए सखियों, आज दो ऐसे विषय लेकर आए हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दो मुहे बालों के उपचार की। सखियों, सुंदर, घने और चमकदार बाल हर किसी की चाहत होते हैं, लेकिन जब बालों के सिरे फटकर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं तो उन्हें दो मुहे बाल कहा जाता है। और ये समस्या ऐसी है निकहत, जो महिलाओं के साथ ही साथ पुरुषों में भी देखने को मिलती है।
0: अच्छा भाई, मैंने तो महिलाओं में देखी है। और पता है संगीता, गुरुजनों पहले मेरे बाल भी दो मुहे हो गए थे।
1: अच्छा।
0: और ना, हाँ, क्या होता था कि मैं कैंची लेकर के ना एक एक बाल को बस काट लेती थी, दो मुहे बालों को। लेकिन भाई फिर जो है मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है, इससे तो दो मुहे जो बाल है वो तो खत्म नहीं होंगे, है ना। तो बल्कि मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किस कारण से होते हैं। तो कई कारण इसके पीछे होते हैं, जैसे कि बार बार हेयर ड्राई करना, स्ट्रेटनर या फिर कलर का इस्तेमाल, धूप और धूल का जो असर है, या बहुत तेज रसायन वाले शैम्पू, बालों में तेल ना लगाना, पोषण की कमी और पर्याप्त पानी ना पीना, ये सभी कारण बालों को कमजोर बना देते हैं। तो पता है संगीता, जब मैं अपने एक एक बालों को काटती रहती जो दो मुहे हो जाते थे नीचे से, तो मुझे लगा कि जब, जैसा कि मैंने कहा कि भाई इसका तो कोई ना कोई कारण होगा, मैं इसको कब तक काटती रहूंगी, ये तो फिर से हो जाते हैं। तो इसका जो मुझे समझ में आया ना, वो ये था कि बहुत तेज रसायन वाला जो शैम्पू है ना, मैं वो इस्तेमाल करती थी, इस वजह से वो दो मुहे हो जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपना शैम्पू चेंज कर दिया और देखो अब मेरे बाल कितने अच्छे हैं, दो मुहे तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे मेरे बाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इन दो मुहे जो बाल हो चुके हैं ना, उन्हें दोबारा से सही तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको करना ये है कि सप्ताह में दो या तीन बार नारियल या बादाम के तेल से हल्की मालिश करें, और जो शैम्पू है ना केमिकल फ्री हो और जो आपको सूट करे उसे इस्तेमाल करें। इसके बाद कंडीशनर का प्रयोग करें। गीले बालों में जोर जोर से कंघी करने के बजाय बालों में उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे उनको सुलझाएं और आपके बाल जिससे कम टूटेंगे। इसके साथ ही हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कलर का उपयोग कम से कम करें, और हो सके तो 6 से 8 हफ्ते में बालों को कटवाएं जरूर।
0: और संगीता देखो, सिर्फ बालों की बाहरी देखभाल ही काफी नहीं है बल्कि खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपने भोजन में हम हरी सब्जियां खाएं, मौसमी फल खाएं, दालें हैं, दही, अंडे, मेवे, और सबसे जरूरी बात कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सही पोषण मिलेगा तो बाल भी मजबूत होंगे और चमकदार भी होंगे।
1: बिल्कुल निकहत, देखिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा सौंदर्य किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी थाली यानी अच्छे खान पान से मिलता है। लेकिन पता है, कई बार हमारी रसोई में ऐसी सब्जी होती है जिन्हें हम साधारण समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्यों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक हरी भरी सब्जी की जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत का खजाना भी है, और वो है परवल।
0: जी
1: हाँ, परवल। वो पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी इसको कहा जाता है सखियों।
0: लेकिन संगीता देखो, परवल देखने में भले ही साधारण लगे लेकिन इनमें सेहत के कई राज छिपे हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, आयरन और

0: एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये कम कैलोरी वाली लेकिन पौष्टिक सब्जी है।
1: बिल्कुल निकाहते, यानी कि छोटी सी सब्जी लेकिन फायदे बड़े बड़े। इसका सबसे पहला फायदा ये होता है कि भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है ये, और कब्ज जैसी समस्या किसी को हो ना तो उससे भी राहत दिलाता है। और इसमें मौजूद जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है ना उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ कैलोरी कम होने के कारण ये वजन को कम करने में, नियंत्रित करने में भी हमारे लिए मदद करता है, और ये अच्छा विकल्प माना जाता है इसके लिए, क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा होती है ना वो बहुत अच्छी खासी होती है, जिससे ये शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है, और गर्मी के मौसम में ये हल्का और सुपाच्य भोजन माना जाता है।
0: और देखो, कम तेल और हल्के मसालों में बनी परवल की जो सब्जी है वो सबसे अच्छे विकल्प है। आप चाहें तो इसे दाल के साथ, इसे भरवा या फिर दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाकर खाया जा सकता है। मैं तो अक्सर संगीता इसको भरवा बनाती हूँ या फिर आलू के साथ मिक्स करके भी मैं इसको बनाती हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और पोषण भी मिलता है।
1: बिल्कुल, तो सखियों भाई अगली बार जब आप अपनी थाली में परवल आए आपके थाली में ना, तो इसे साधारण सब्जी समझकर छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये तो स्वाद के साथ साथ आपके शरीर को जरूरी विटामिन, खनिज और फाइबर भी देता है। तो स्वस्थ रहें, संतुलित भोजन करें और मौसमी फल सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल।
0: बिल्कुल, और देखो संगीता, इतना खूबसूरत, इतना सुहावना मौसम है, तो हम अपने कार्यक्रम में ऐसा बारिश का अगर गीत ना शामिल करें तो मुझे लगेगा कि आज का कार्यक्रम जो है थोड़ा सा अधूरा सा हो लगेगा, है ना? तो एक बारिश का प्यारा सा गीत सुनते हैं।

तो भाई इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद अब हमारी बहनों के साथ बिताए इन खूबसूरत पलों को समेटने का वक्त आ चुका है, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो कह रही है कि आज के लिए बस इतना ही। तो अगले गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हम बहनों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

ये था महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। दोपहर समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: the bulletin the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य

प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन

0: दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से

0: पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक।

0: एक बात है, यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए,
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन

0: शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।

0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।

0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बज रहे हैं, ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक FM 100.3 MHz पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रसारण सुने जा सकते हैं।

मीडियम वेव 252.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है जावेद अली की आवाज में फिल्म पुष्पा टू से। गीतकार रकीब आलम, संगीतकार देवी श्री प्रसाद।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे बंटी और बबली फिल्म का गीत, शंकर एहसान, शंकर महादेवन, सौम्या राव और लाय मेंडोसा की आवाज़ों में। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्णा के संगीत निर्देशन में राज शेखर का लिखा गीत, आवाजें लेहम्बर हुसैनपुरी की। फिल्म का नाम तन्नू वेट्स मन्नू।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स।

0: लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां बातें सिर्फ जानकारी की नहीं होती बल्कि सोच को नई दिशा देने की भी होती है। मैं हूं दिव्या द्विवेदी
1: और मैं हूं सुष्मिता श्रीवास्तव।
0: तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, असली बात ये है कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस सोच के साथ उसको हम लेके जाते हैं, उसके उद्देश्य के साथ करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या। दोस्तों ज़रा सोचिए ना एक पल के लिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं। अलार्म बंद करते हैं, मोबाइल देखते हैं, किसी को मैसेज करते हैं या किसी का मैसेज देखते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर सोशल मीडिया की तरफ नज़र डालते हैं, स्क्रॉल करते हैं। शायद हम में से ज़्यादातर लोग का ना इन्हीं में से कोई जवाब होगा, यानी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें डिजिटल तकनीक अब कोई सुविधा भर नहीं रह गई बल्कि जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है।
0: बिल्कुल सुष्मिता, कभी ऐसा समय था जब किसी की चिट्ठी के जवाब का इंतज़ार हफ्तों तक करना पड़ता था, बैंक का काम पूरा करने में आधा दिन निकल जाता था और जानकारी जुटाने के लिए कई कई किताबें पलटनी पड़ती थी। लेकिन आज वही काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि डिजिटल तकनीक से जो समाज का विकास हुआ उसकी एक गति का ये एक रूप है।
1: और आज का जो हमारा विषय है ना वो भी इसी बदलाव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों समाज में विकास जो हुआ है उसमें डिजिटल तकनीक की आखिर भूमिका क्या है। यह विषय सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, व्यापार, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के अवसर और देश के विकास तक भी फैला हुआ है।
0: दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल देशों में गिना जाता है। करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंच चुकी हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं की जानकारी, टेली मेडिसिन, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ई गवर्नेंस जैसी सुविधाएं लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान बना रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि डिजिटल तकनीक ने सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांव तक भी अपनी पहचान बना ली है। आज गांव का एक युवा अपने मोबाइल से ऑनलाइन कोर्स कर सकता है और अपने हुनर का जो वीडियो है वो भी बना के पूरी दुनिया के सामने ला सकता है, घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकता है और या अपना छोटा सा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो भी शुरू कर सकता है।
0: अगर शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो डिजिटल तकनीक ने सीखने का तरीका ही बदल दिया है। पहले अच्छी पढ़ाई के लिए लोग बड़े शहर जाना ज़रूरी मानते थे, लेकिन अब जब से मोबाइल हमारे पास आया है ना, तब से मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के लेक्चर, ई बुक, ऑनलाइन टेस्ट, वर्चुअल क्लासरूम, स्किल डेवलपमेंट के वो कोर्सेज और हर छात्र तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसे सीखने के अवसर भी जो हम देख रहे हैं वो पहले की मुकाबले तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये एक हद तक देखा जाए तो काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है।
1: बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर हम बात करें तो युवाओं के पास नई स्किल भी है सीखने के लिए और अनगिनत अवसर भी। कोई ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, कोई कोडिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग या कोई नई भाषा। डिजिटल तकनीक में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इस बात को तो सच साबित कर दिया है।
0: सुष्मिता, हम लोग डिजिटल तकनीक का जो हमारे समाज में प्रभाव पड़ा है इस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम

0: दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे समाज के विकास में डिजिटल तकनीक की भूमिका, और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अब जरा आते हैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पे भी थोड़ा नजर डालते हैं। पहले दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से जो सलाह लेना हो गया है वो बहुत आसान हो गया है। मतलब आप गांव के क्षेत्र में बैठकर भी एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी भी सलाह लेकर आप अपने आप को जो एक प्राइमरी इलाज होता है, फिर तो आप हॉस्पिटल लेके जाते ही हो, लेकिन जो एक प्राइमरी कंसल्ट होता है वो आप तुरंत लेके उस पर अपना फर्स्ट एड कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है डिजिटल के माध्यम से। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन और अपॉइंटमेंट जो लेना हो गया है, पहले होता था कि हम हॉस्पिटल में जाके अपॉइंटमेंट्स रजिस्टर करवाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम तो बचता ही है, साथ में हमें डॉक्टर से जो कांटेक्ट करने के बीच में जो बहुत टाइम लगता था वो हम पहले से अपना रजिस्टर करके रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ जो होती हैं वो हमें आजकल इंटरनेट पे बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। मतलब अगर छोटी मोटी बीमारी, वैसे तो कहा जाता है कि सीधा आप डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन जो एक प्राइमरी इलाज इंसान को खुद की बुद्धि लगा के ले लेना चाहिए वो आजकल आप इंटरनेट से सीख के ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, वो एक्सेस काफी इजी हो गया है हमारा। और इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ कि मेडिसिन वाले क्षेत्र में ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो डिजिटल तकनीक किसानों की एक बड़ी साथी बनकर उभरी है। मौसम की जानकारी हो, मंडी के भाव हों, नई खेती की कोई टेक्निक हो, या सरकारी योजनाओं की जानकारी और फसल से जुड़ी सलाह अब मोबाइल पर उपलब्ध है। इससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
0: सुष्मिता, जैसे हम लोग कृषि की अगर तुमने बात की है तो मैं बता दूं कि जो आजकल ये केमिकल वाली खेतियां लोग छोड़कर वो एक ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक डिजिटल जो विकास आया है उसके कारण ही हो रहा है। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: लोग आजकल इंटरनेट पे पढ़ पा रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती होती कैसे है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, और जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी होती है, वो इरिगेशन कैसे करना होता है, उसकी सीडिंग कैसे करनी होती है, कैसे सीड्स होते हैं उनके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आजकल ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है। लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कृषि के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, बेटर क्रॉप्स कैसे उगाए जाएं और कैसे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सब भी एक बहुत ही बेनिफिशियरी पहल कहेंगे हमारे इंटरनेट के कारण, हमारे इस दुनिया में जो मिल रहा है देखने को। और साथ ही साथ अगर रोजगार की बात करें दोस्तों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज लाखों युवा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, स्टार्टअप जो संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, छोटे व्यवसाय भी सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाए जा रहे हैं। लोग अपने ऑनलाइन शॉप खोल रहे हैं, जो पहले हम देखते थे कि लोगों को एक दुकान की ज़रूरत पड़ती थी अपना सामान बेचने के लिए, लोग आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिना किसी तरीके का एक्स्ट्रा वेग दिए हुए, उस चीज़ का कर दिए हुए, आप वहाँ पे अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और आप अपनी एक सोलो अर्निंग जिसको कहते हैं वो कर पा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद है।
1: और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है ना दिव्या लोगों को, कि लोग कहीं से भी उसको देख पा रहे हैं। मतलब अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आपको हर कोई देख पा रहा है। आपका जो बिजनेस है वो लिमिटेड नहीं है किसी एक क्षेत्र में। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी डिजिटल टेक्निक किसी क्रांति से कम नहीं है दोस्तों। आज कई महिलाएं घर में ही अपना ऑनलाइन व्यवसाय चला रही हैं। हस्तशिल्प की बात हो, सिलाई की बात हो, पेंटिंग या अन्य कोई भी ऐसे उत्पाद हो, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू ग्राहकों तक पहुंच सक रहे हैं वो लोग। और इससे आर्थिक जो आत्मनिर्भरता की हम कई बार बात करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट से हम हमेशा इंडिपेंडेंस की बात जोड़ते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो वो इससे मिल पा रही है।
0: दोस्तों, डिजिटल तकनीक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष और है।

0: है डिजिटल भुगतान। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर दुकान में एक QR कोड रखा हुआ है। आज UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेन देन जो हो गया वो बहुत तेज़ हो गया और सरल भी हो गया है, काफ़ी हद तक पारदर्शी है। लोग QR से पे कर रहे हैं तो किसी तरीके की कोई जानकारी आपकी साझा नहीं हो रही है, और आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रह रहे हैं, आपकी डिटेल शेयर नहीं हो रही है बायर और आपके बीच में। तो एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। छोटी सी चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, हर जगह डिजिटल भुगतान आजकल के टाइम पे एक बहुत सामान्य बात हो गई है।
1: और शायद सबके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है, सबको आसान भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं और शायद हमारे पास कैश नहीं होता है, तब भी हम कई जगह पे बहुत आराम से UPI के थ्रू पेमेंट कर देते हैं।
0: बिल्कुल
1: लेकिन दोस्तों, जब हम सुविधाएं की बात करते हैं ना, तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं।
0: बिल्कुल
1: डिजिटल दुनिया ने साइबर सुरक्षा तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक उभर के आता है जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, और हमें अपने पासवर्ड सुरक्षित रखने चाहिए, किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, OTP किसी से साझा नहीं करना चाहिए, और सोशल मीडिया पर सोच समझ कर ही जानकारी शेयर करनी चाहिए।
0: गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार इस चीज़ की सूचना जारी की जाती है कि कोई आपको फ़ोन करके आपकी बैंक डिटेल्स मांगे या आपसे आपकी OTP शेयर करने को बोले, KYC शेयर करने को बोले, तो बिल्कुल भी ये सब शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक कभी भी आपको फ़ोन करके आपसे KYC, पासवर्ड, ईमेल और कोई भी ऐसी जानकारी आपसे नहीं मांगेगा जो आपको आपके पैसों को नुकसान पहुंचा सके। आपको बैंक जाके फिजिकली आपको वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है, तभी आपकी पेमेंट ट्रांजैक्ट होती है। ऐसे आपको ट्रांजैक्शन बैंक से फ़ोन करके आपके लिए नहीं आता है कोई भी कॉल। तो आपको अगर ऐसे कोई कॉल आ रहा है तो फ्रॉड से बचें और अपने आप को सतर्क बनाएं। और दूसरी चीज़, आप एक और चुनौती हमको देखने को मिल रही है, फेक न्यूज़। जब से ये इंटरनेट का जो दरवाज़ा खुला है, किसी भी न्यूज़ को जो स्प्रेड करने की स्पीड बढ़ी है वो एकदम देखने लायक है। मतलब आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज देखते हैं कि आप इसे 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए,
1: बिल्कुल
0: पांच लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। तो एक वो एक हम ये भी नहीं सोचते हैं फॉरवर्ड करने से पहले कि गलत न्यूज़ भी हो सकती है वो।
1: बिल्कुल
0: तो अगर आपके पास ऐसे कोई मैसेज आता है या आप कोई भी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जो एक सोशल स्टेटस रखती हो, न्यूज़ का कोई वज़न हो, न्यूज़ कोई ऐसी वज़नदार बात पर हो, तो पहले उसकी पुख्ता जानकारी करें, उसके बारे में 3-4 वेरीफाइड सोर्सेस से जाके आप उसको पढ़ें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, उसके बाद उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। ऐसी ही किसी फेक न्यूज़ को आप स्प्रेड ना करें, क्योंकि जो एक स्प्रेड की जो चेन होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा हम भी होते हैं। अगर हम उसे आगे बढ़ाएंगे तो वो फेक न्यूज़ आगे जाएगी, तो इसलिए उसको वहीं पर तोड़ दें।
1: बिल्कुल और क्योंकि हमने पहले भी दिव्या इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी की बात की थी कि जब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म आया है तो हमारी खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। डिजिटल टेक्निक का सही प्रयोग हमें जोड़ता है, आगे बढ़ाता है, अवसर नए देता है, लेकिन अगर किसी गलत या इसका अत्यधिक उपयोग हुआ तो समय की बर्बादी हो सकती है, मानसिक तनाव जैसी चीज़ें भी देखने मिलती हैं, या सामाजिक दूरी एक कारण बन सकती है। इसलिए जो डिजिटल मीडिया के थ्रू जो संतुलन है ना बनाए रखना, वो दोस्तों इक्वली ज़रूरी है।
0: युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख ये भी है दोस्तों कि तकनीक का जो उपयोग है सिर्फ मनोरंजन तक सीमित ना रखें। अगर हर दिन थोड़ा समय वो नई स्किल सीखने, ज्ञान बढ़ाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगाएंगे तो ये डिजिटल दुनिया भविष्य के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा है, तब से हमारी जो एक फैमिली में जो हम जब उठते बैठते थे, लोगों से बातें करते थे, उसमें भी दूरी आ गई है। हमारे अपने आपसी रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, तो उसे और ना बढ़ाएं, उस गैप को और ना आप एक्सपेंड करें, उसको बढ़ाएं नहीं, बल्कि आप अपने लोगों को भी टाइम दें। ये डिजिटल दुनिया तो सिर्फ एक फेक वर्ल्ड है, जो हमारी असली दुनिया वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस हैं। तो आप उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम बिताएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, वो आपके लिए रियल वर्ल्ड होगा।
1: और कई बार दिव्या, जो हम फॉर्मेलिटी समझते हैं ना, किसी को टेक्स्ट कर देना या टेक्स्ट पे पूछ लेना कि आप कैसे हैं, उसके ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जा सकते हैं उनसे मिलने तो वो स्टेप हमेशा कारगर है। रादर देन टेस्टिंग

0: आप उनसे जाके फिज़िकली मिलें, उनका हाल पूछें, क्योंकि फ़ोन के दूसरे साइड का हाल हम तभी उनसे मिल के ही समझ पाते हैं। तो ऐसी जो दूरियां हैं उसको, ये तो हमारे हाथ में है कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं और अपने रिश्ते कैसे मज़बूत कर सकते हैं। और तो दोस्तों यही बातें थी कुछ कि जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है वो कैसे किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी कितना डेवलप कर रही है। लेकिन तकनीकी केवल मशीन का विकास तो है नहीं, बल्कि हमारी सोच का अवसर जो मिल रहा है हमें, समाज में एक विकास की यात्रा हो रही है, तो हमें उसको तेज़ तो बनाती है, हमें जोड़ती भी है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हमने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की इस और कई बार बात की कि कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हाथ में ये फ़ोन्स, आजकल स्मार्टफोन सबके पास हैं, तो ये जो जुड़ाव है हमारा अपनों से वो नहीं टूटना चाहिए। तो
1: क्योंकि दोस्तों RBI कहता है जानकार रहिए, सतर्क बनिए।
0: और इसीलिए ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम समझदारी से काम करें।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: तो दोस्तों, एड ब्रेक से पहले आप जो गीत सुन रहे थे वो कितना ब्यूटीफुल था ना। और ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जैसे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक कविता पाठ। कविता पाठ करने वाली जो हमारी ब्यूटीफुल सी जो दोस्त हैं, उनका नाम है संस्कृति मिश्रा। आइए सुनते हैं ये कविता पाठ उन्हीं की आवाज़ में।
4: प्रस्तुत है मेरी पहली कविता, संघर्षशील रास्ते। चारों ओर घंघोर अंधेरा, काले विघ्नों का पहरा, विचलित करते ऊंचे पर्वत, सामने महासागर गहरा। चारों ओर घंघोर अंधेरा, काले विघ्नों का पहरा, विचलित करते ऊंचे पर्वत, सामने महासागर गहरा। उठो बढ़ो, किसकी तुम्हें तलाश है? अरे इन मुश्किलों से तू क्यों निराश है? अरे इन मुश्किलों से तू क्यों निराश है? इनसे घबराना तुम्हारा उद्देश्य नहीं, इनसे घबराना तुम्हारा उद्देश्य नहीं। याद रखो तुमसे कोई श्रेष्ठ नहीं, याद रखो तुमसे कोई श्रेष्ठ नहीं। इन्हीं रास्तों से तुम्हें गुजरना है, इन्हीं रास्तों से तुम्हें गुजरना है। अंगारों पर भी सहजता से चलना है, अंगारों पर भी सहजता से चलना है। सामने विघ्नों का ढेर पड़ा है, सामने विघ्नों का ढेर पड़ा है। तू इनके बीच असहाय खड़ा है, तू इनके बीच असहाय खड़ा है। तुम निडर हो, तुम्हें किसी का डर नहीं, तुम निडर हो, तुम्हें किसी का डर नहीं। इस विनाशकारी अग्नि का तुम पर कोई असर नहीं, इस विनाशकारी अग्नि का तुम पर कोई असर नहीं। असफलताओं से क्यों तुम सहम रहे हो, असफलताओं से क्यों तुम सहम रहे हो? कदम बढ़ाने के लिए क्यों सोच रहे हो, कदम बढ़ाने के लिए क्यों सोच रहे हो? पुकार रही लहरें

तुम्हें बार बार पुकार रही लहरें, तुम्हें बार बार। सफलता है बस कुछ मील हजार, सफलता है बस कुछ मील हजार। आगे काटा सीना तान खड़ा है, आगे काटा सीना तान खड़ा है। यह संसार मुश्किलों से भरा है, यह संसार मुश्किलों से भरा है। एक ऊंची इमारत की नींव रखनी है, एक ऊंची इमारत की नींव रखनी है। सतत परिश्रम और कोशिश करनी है, सतत परिश्रम और कोशिश करनी है। तुम्हारे अंतर मन में धधक रही है ज्वाला, तुम्हारे अंतर मन में धधक रही है ज्वाला। अब तो पहन लो साहस की माला, अब पहन लो साहस की माला। युद्ध में लड़ने वाले वीर कांटों से नहीं डरा करते, युद्ध में लड़ने वाले वीर कांटों से डरा नहीं करते। ऐसी कोई विपदा नहीं जिसे तुम हरा

0: अंतर मन में धधक रही है ज्वाला, अब तो पहन लो साहस की माला, अब पहन लो साहस की माला। युद्ध में लड़ने वाले वीर कांटों से नहीं डरा करते, युद्ध में लड़ने वाले वीर कांटों से डरा नहीं करते। ऐसी कोई विपदा नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते, ऐसी कोई विपदा नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते। हौसले बुलंद हैं तो मंजिल आसान है, हौसले बुलंद हैं तो मंजिल आसान है। ऊंचाइयों से घबराना नहीं, भरनी तुम्हें उड़ान है, ऊंचाइयों से घबराना नहीं, भरनी तुम्हें उड़ान है। सफलता की सीढ़ी को तुम्हें चढ़ते रहना है, सफलता की सीढ़ी को तुम्हें चढ़ते रहना है। विघ्नों से घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मेरी दूसरी कविता है दोहरे चेहरे। आँखों में नम्रता और मुस्कान पर गर्मजोशी की पहरे, आँखों में नम्रता और मुस्कान पर गर्मजोशी की पहरे। इसमें कितने मुखौटे कितने चेहरे, इसमें कितने मुखौटे कितने चेहरे। ना जाने किसने किसने ढोंग का स्वांग रचा है, ना जाने किसने किसने ढोंग का स्वांग रचा है। ऐसे नाटक से तो भगवान भी नहीं बचा है, ऐसे नाटक से तो भगवान भी नहीं बचा है। इस ढोंग के बाजार में हर कोई बिक गया है, इस ढोंग के बाजार में हर कोई बिक गया है। लोगों के मन में अब प्रेम ही मिट गया है, लोगों के मन में अब प्रेम ही मिट गया है। इस कला में हर कोई निपुण है, इस कला में हर कोई निपुण है। मुखौटे बदलना ही तो इनका असली गुण है, मुखौटे बदलना ही तो इनका असली गुण है। रंगमंच पर ऐसी नाट्य प्रस्तुति न देखी होगी, रंगमंच पर ऐसी नाट्य प्रस्तुति न देखी होगी। कुछ मिनटों में रंग बदलने की ऐसी कला न देखी होगी, कुछ मिनटों में रंग बदलने की ऐसी कला न देखी होगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। चेहरा बदलते बदलते इंसान इंसानियत ही भूल जाएगा, चेहरा बदलते बदलते इंसान इंसानियत ही भूल जाएगा। इन अदाकारों ने क्या अभिनय किया है, इन अदाकारों ने क्या अभिनय किया है। पूरे संसार को तो बदल कर ही रख दिया है, पूरे संसार को बदल कर ही रख दिया है। सब ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, सब ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। अपना काम वसूलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, अपना काम वसूलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। रगों में बह रहा है स्वार्थ से भरा खून, रगों में बह रहा है स्वार्थ से भरा खून। सिर चढ़कर बोल रहा है छल कपट का जुनून, सिर चढ़कर बोल रहा है छल कपट का जुनून। इस बेमंजिल की दौड़ में करोड़ों लोग भागे हैं, इस बेमंजिल की दौड़ में करोड़ों लोग भागे हैं। इसमें कितने पीछे और कितने आगे हैं, इसमें कितने पीछे और कितने आगे हैं। आँखों से झलकता छली प्रेम और स्वर में मिठास की लहरें हैं, आँखों से झलकता छली प्रेम और स्वर में मिठास की लहरें हैं। इसमें ना जाने कितने मुखौटे कितने चेहरे हैं, इसमें ना जाने कितने मुखौटे कितने चेहरे हैं। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ, और जिनकी आवाज़ थी उनका नाम है संस्कृति मिश्रा और प्रस्तुति थी भूपेंद्र कुमार मिश्र की। अब बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम प्रेरणा पुंज में। आज प्रेरणा पुंज में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हर चुनौती का सामना किया, कभी हार नहीं मानी और अपने कर्मों से इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं बाबू

0: जीवन राम जी के बारे में।
1: दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हालात हमारे खिलाफ होते हैं। लोग हमारी पहचान, हमारी पृष्ठभूमि या हमारी परिस्थितियों से हमें आंकने लगते हैं, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी ने सिखाया कि आपकी मंजिल का फैसला आपकी मेहनत करती है, ना कि आपकी परिस्थितियाँ।
0: वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई, हर मुश्किल का सामना किया लेकिन आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया।
1: 5 अप्रैल 1908 को जन्मे बाबू जगजीवन राम जी, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी लोग जानते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक शख्स और एक उत्कृष्ट सांसद थे।
0: वर्ष 1931 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और उन्होंने उसके साथ जुड़ के अपना जो सामाजिक कार्य है उसको करने की जो अपनी प्रण था उसको निर्वाहन करना शुरू किया। सन 1946 में वे जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने।
1: स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 तक श्रम विभाग का संचालन किया और इसके बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में संचार विभाग संभाला, रेलवे तथा परिवहन और संचार मंत्री के भी पदों पर कार्य किया।
0: उनका भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड रहा है। उनके लिए नेतृत्व का मतलब केवल पद नहीं था बल्कि लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें समाधान तक पहुंचाने का काम करना था। वे मानते थे कि सच्चा नेता वही है जो कमज़ोरों की मदद करे और अपनी जो नेतागिरी है सिर्फ समाज सेवा में निभाए।
1: और युवाओं के लिए उनकी कहानी की जो सीख है वो हमें यही मिलती है कि आप जैसी भी परिस्थिति में हों, आपको कभी अपने पास जो सीखने की इच्छा है उसे नहीं ख़त्म करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए।
0: और दोस्तों, जगजीवन राम जी का जो जीवन परिचय वो हमें यही सिखाता है कि आप किसी पद पर पहुंच जाएं, किसी पद पर आसीन हो जाएं, तो आप उस शक्ति को अपनी सबसे बड़ी ताकत ना समझने लगें बल्कि उससे जो जिनको इसकी आवश्यकता है, जो उनकी मदद से अपने आप को जीवन यापन कर सकते हैं, उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके आप जीवन को आसान बनाइए। यही असली समाज सेवा है।

तो दोस्तों आती है क्वेश्चन की बारी, और कल का जो हमारा सवाल था वो था कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और उसका सही जवाब

0: है समुद्रगुप्त।
1: हाँ तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था जिसे यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क पे शामिल किया गया है। आप अपना उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पे और व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होने को है। मैं दिव्या द्विवेदी
0: और मैं सुष्मिता श्रीवास्तव
1: लेते हैं आपसे विदा।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवा वाणी, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।

0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
2: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 9:30 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, चर्चा का विषय है पंचायत घर में। शाम 6:30 ग्रामीण भाई दीनानाथ यादव और साथियों के स्वर में लोकगीतों के अलावा सीताराम मिश्र से नीति वचन सुनेंगे। शाम 7:31 पर सुनिएगा बोलते नगमे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर हम आपको पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन सुनवाएंगे। चित्रपट संगीत रात 8:00 और फिल्म संगीत रात 10:00। रात्रि 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की

रूपरेखा। कल शाम 4 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संदेश टू सोल्जर्स। कृषि जगत में प्रातः 6:35 पर किसान भाई नीरज पांडे से अरविंद कुमार की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा फलदार वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। प्रातः 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें आप डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता सुनेंगे, हिपेटाइटिस कारण लक्षण और उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुन सकते हैं 7:00 बजे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 7:30 बजे जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन होगा। दिन में 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का ख्याल गायन और रात्रि 10:30 पर संगीता शंकर का वायलिन वादन प्रसारित करेंगे। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। 10:05 पर लोक माधुरी में कलाकार होंगे आश्रया द्विवेदी, इंद्रजीत यादव और साथी। 10:30 पर धारा सिंह, सुरेंद्र कुमार पटेल और ओम प्रकाश दीपक एवं साथी। दिन में 15:15 पनघट में प्रतिमा मिश्रा और शाम 6:30 पंचायत घर में राजमणि धमाल और साथी। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत कृषक श्याम बाबू और शिवजीत गौतम की बातचीत भी सुनेंगे। 11:30 कल आप सुन सकते हैं भूलते नगमे। श्रोता अपने फ़ोन कॉल्स पर आधारित पसंदीदा फिल्मी कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। पनघट में 15:15 ग्रामीण बहनें लोकगीतों के अलावा अमरावती देवी का काव्य पाठ सुनेंगी। शाम 7:31 पर काव्य कॉमेडी, कवि होंगे शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर कलाकार होंगे वरुण मिश्र और रात 7:45 विनीता मिश्रा के स्वर में गीत और भजन प्रसारित किए जाएंगे। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं कल रात 9:30। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। ये पहली सूचना है लक्ष्मीकांत मिश्रा निवासी शुकुलपुर थाना मांडा जनपद प्रयागराज से सूचित करते हैं कि उनके भाई गुलाब शंकर मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय राम रक्षा मिश्र, उम्र 60 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है। इनकी आँख के पास चोट का निशान है। ये दिनांक 24 सितंबर 2025 से अपने निवास स्थान ग्राम शुगुलपुर थाना मांडा जनपद प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने कुर्ता और पैजामा पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया थाना मांडा जनपद प्रयागराज को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर नोट कर लें 8953808306। ये सूचना है थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी से। रवि प्रकाश सूचित करते हैं

कि उनके पिता परम सुख, पुत्र स्वर्गीय हर्षट, उम्र लगभग 55 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, शरीर की बनावट सामान्य है। ये दिनांक 4 जून 2026 से शाम लगभग 5 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम अलवारा, थाना महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद जूता पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। संबंधित मोबाइल नंबर कृपया नोट कर लें, 9565357932। ये सूचना है संदीप के बारे में। संदीप पुत्र कैलाश, उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट इकहरी, चेहरा लंबा, ये दिनांक 15 मई 2026 से सवेरे लगभग 7 बजे से ग्राम चक जमीन महजबा काजीपुर, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सफ़ेद टी शर्ट, धारीदार लोअर पहना हुआ है। इनके बारे में विशेष ये है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। किसी भी प्रकार की इनके बारे में सूचना मिलने पर कृपया थाना काजी सैनी, जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। मोहम्मद काशिफ, पुत्र जावेद हैदर, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 11 इंच, चेहरा सामान्य, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट मध्यम है। ये दिनांक 10 मई 2026 से रात लगभग 10 बजे से मकानवादी, थाना धूमनगंज, प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने ब्राउन कलर की शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज को सूचित करें। संबंधित फोन नंबर कृपया नोट कर लें, 7 6 6 8 7 9 2 2 3 2। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 7 6 6 8 7 9 2 2 3 2।

0: श्री किशन लाल निवासी ग्राम मझियारी उर्फ दुल्हनियापुर थाना कौशाम्बी जनपद कौशाम्बी से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री हनुमंती उम्र 17 वर्ष कद 5 फीट रंग सांवला चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 1 जून 2026 से दोपहर लगभग 3 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम मझियारी चक उर्फ दुल्हनियापुर थाना कौशाम्बी और जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना कौशाम्बी जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। यह सूचना है ग्राम इकहला थाना उतराव जनपद प्रयागराज से। खुशबू पुत्री रमेश कुमार उम्र 23 वर्ष कद 5 फीट रंग गोरा चेहरा सामान्य है। शरीर की बनावट इकहरी है। ये दिनांक 11 मई 2026 से दिन में लगभग 1 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम इकहला थाना उतराव से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने क्रीम कलर का सूट लाल सलवार और नीली स्लीपर पहनी हुई है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना उतराव जनपद प्रयागराज को सूचित करें। इनकी एक विशिष्ट जो पहचान है वो है इनके दाहिने हाथ पर जले का निशान है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिली करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे युनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम् प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिकन्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं संधिज्ञापनं सम्प्रति

0: इति समाप्ति पदम एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिंतन प्रभावात भारतीय शेयर विपणौ भीषण ह्रासः। सेंसेक्स निफ्टी सूचकांको सार्ध द्विशतात्मिका अपचिति दृश्यते। अपि च फीफा विश्व कप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपांत्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य इंडोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते यूनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मंदिर परिसरे इंडोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारंपरिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमंत्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्। नवम शताब्द्याः अस्य मंदिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमंत्रिणा मुख्य शिव मंदिरे विशेष पूजार्चना कृता। सहैव भारत इंडोनेशिया देशयोः सहयोगेन मंदिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितम् यत् प्रम्बानन मंदिरं भारत इंडोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मंदिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञ्यम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमंत्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादश शताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इंडोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: जकार्तायाम द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इंडोनेशिया देशाभ्याम सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निंदा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्याम अंतरराष्ट्रीय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ़ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्याम प्रमुखाभ्याम वैश्विक स्तरे प्रतिबंधितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलम् प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमति प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमंत्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्रिणा एंथनी एल्बनीज इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् उभय देशस्य शीर्ष उद्योगपतीन तथा च मेलबर्न नगरे प्रवासी भारतीय सभां च संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य अतिवृष्ट्या जलौघ सदृश परिस्थित्या सहैव भूस्खलनेन प्रभावितानां संकटग्रस्तानां अनेकेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः साकं दूरभाषेन संभाषणं विहितवान्। तेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य पक्षतः संभाव्य सर्वविधसाहाय्यस्य दृढाश्वासनं च असौ अयच्छत्। श्रीशाहेन महाराष्ट्रराज्ये भीषण अतिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमंत्रिणा मुख्यमंत्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्र सर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविध साहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमंत्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमंत्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मंत्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले

0: www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्रि दिनेषु प्रावृट् उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् सम्पूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं संधि ज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह संभाषणं कर्तुं नैव वांछति। राष्ट्रपतिः ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होमूर जलपोते त्रिषु तैलग्राहक पोतेषु अस्त्र प्रहारेण संजातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्याक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रय प्रतिस्पर्धा दृष्टा, यस्य प्रभावात् सेंसेक्स निफ्टी इत्येतो उभावपि प्रमुख सूचकांकौ शत प्रतिशतं सार्ध द्वि प्रतिशतात्मिका अपचितिः अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन अद्य श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमित संख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्य चक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: देखा, जब खेती बाड़ी के बात होत हो ना रघु भैया, तो एक बात का चर्चा और होता अपने पंचायती में हो
1: हाँ बोला भैया,
0: भैया, मिश्रित खेती। भैया
1: बिल्कुल कह गए भैया।
0: मिश्रित खेती देखा रघु भैया, वो खेती है जौने से भैया एक भैया मौसम में दो तीन प्रकार के भाजी के
1: हाँ भैया
0: खेती हो जाता है, और अपने खेती में भी दो तीन प्रकार के
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बुआरी हो जाता
1: भैया।
0: है।
1: देखा अनाज से बेहतर जो है
0: हाँ हाँ
1: अपन सब्जी जी खेती बाड़े भैया,
0: एकदम सही कहा भैया, देखा
1: ये नकदी
0: दोनों।
1: फसल बाटे भैया,
0: हाँ हाँ हाँ
1: कम समय में जल्दी ज्यादा उत्पादन दे दे भैया,
0: हाँ हाँ हाँ
1: आर्थिक लाभ भी होते भैया।
0: ये तो सही कहता है। अच्छा एक बात और रहे हो,
1: बोला भैया।
0: देखे जब बात सब्जी के करत है तो देखे अब खत किसान भैया बहनी हरे एक के खेती में भैया भिंडिया बो दिए हैं, वहीं से मेड़ी निकाल के भैया कम से लौकी कोहड़ा बोए हैं, तो ये है कि खेती के नाम से मिश्रित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही साथ एक बात और है, देखो कुछ किसान भैया बहनी हरे मक्का बोए हैं,
1: हाँ भैया।
0: तो मक्का में कहा है कि भैया देखा मक्का तो ऊपर होता है, नीचे भैया उर्दी जौन होता है करीबा,
1: अच्छा
0: वह
1: जी
0: किसान भैया बहनी हरे बो दिए हैं, तो साथ ही साथ ही उनकर भैया फायदा हो जाता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और कम से अच्छा खेतियों करते हैं।
1: हाँ भैया। अरे खेती तो करत बाट नहीं, लेकिन भैया हम एक चीज़ कहा है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: भैया अरे जो है जैसे खाद पानी देते हैं वैसे
0: हाँ
1: समय समय पे उनके खरपतवार निकालत रहे हैं।
0: एकदम भैया, देखा एक बात तो सही कहता है कि जैसे किसान भैया बहनी हरे धान बोए हैं, तो धान में भैया देखा जब तक निराई ना होता है
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया का है कि धान में घास जो है वो बढ़ जाता है, उसे ही होता है कदम से कि आपका जो पैदावार है वह मारत है, दूसरा दूसरा भैया कदम से कीट पतंगा भी लगे के
1: हाँ
0: संभावना बढ़ जाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया। अब भैया देखा कृषक पंजीकरण जो है
0: हाँ हाँ
1: उसके बारे
0: हाँ
1: में।
0: ये तो एकदम सही कह भैया, देखे किसान भैया बहनी हरे जब खेती बाड़ी करते हैं तो उन्हें एक बात का और ध्यान देवे के चाहिए कि भैया आपन पंजीकरण
1: जरूर करा भैया।
0: जरूर करा ले। अच्छा एक बात और रहे हो कि पंजीकरण कराओ बहुत आसान है
1: अच्छा भैया।
0: भैया, कौनों भी काम से पहले मतलब जाए कि अपन काम से रजिस्ट्रेशन कृषि
1: हाँ
0: विभाग चला जाए हुआ करा ले,
1: अच्छा
0: या तो भैया जन सेवा
1: हाँ
0: केंद्र
1: आपके
0: है।
1: भैया हर गली मोहल्ले में बाटे भैया,
0: हाँ हाँ
1: वहाँ जा
0: हाँ
1: करा लिया।
0: हाँ ये तो सही कहे भैया,
1: अब कुछ लोग
0: और
1: ऑनलाइन आवेदन भी करते हैं भैया,
0: हाँ हाँ
1: अपन
0: हाँ
1: सबके हाथ में स्मार्टफोन बाटे भैया,
0: हाँ हाँ
1: अपन मोबाइल से कर लिया।
0: ये तो एकदम सही कहता है भैया। अच्छा एक बात और है,
1: हाँ
0: इससे
1: बोला।
0: भैया फायदा बहुत है
1: हाँ
0: हो,
1: भैया।
0: समझता है कि न्याय समय समय पे जो किसान भैया बहनी हरन की योजना आवत रहते हैं
1: हाँ
0: ओकर भी जानकारी होत रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा नहीं भैया जो अपन के नाम से जैसे कृषि यंत्र खरीदे थे, समझता है कि न्याय,
1: हाँ भैया।
0: तो उसी कारण से उन्हें पता चलत रहते हैं, समझते हैं कि न्याय। और अब जो नया पंजीकरण होता है भैया
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: बहुत आसान बाटे,
1: अच्छा
0: अपने आधार कार्ड से OTP आए KYC के लिए
1: अच्छा
0: ओकरे बाद उनका पंजीकरण होएगा।
1: तो इसे जो है भैया सरकार की का योजना बांटे
0: हाँ हाँ हाँ
1: उनका लाभ मिलत रहा था
0: हाँ हाँ
1: और सीधा जो है उनके खाते में पैसों बाबत है।
0: एकदम सही कहे भैया कर्म से, ये बात तो तू सही कहे हो। लेकिन अच्छा एक बात और है,
1: हाँ बोला।
0: कृषि पंजीकरण हुए से भैया देखे कुछ किसान भैया बहनी हैं जो भैया तो बुद्धिमान हैं, वो अपने कृषि के भैया काम से बीमा करा लेते हैं,
1: अच्छा।
0: तो ऐसे ही होता है कि भैया जो जैसे आपदा आवत है सरकार तो देते ही है, लेकिन काम से भैया उसे ये है कि जो आवेदन करे से
1: हाँ
0: उनके भैया के नाम से उनकर पूरा
1: हाँ अगर
0: जो
1: बीमा
0: नुकसान
1: करा
0: होता
1: लें
0: है
1: तो बीमा
0: हाँ
1: कंपनी उनका पैसा
0: फायदा देते हैं।
1: पैसा दे।
0: और जो कृषि पंजीकरण है भैया उसे यह है कि बीज पर अनुदान है, या कृषि यंत्र लेते हैं नौकर अनुदान है,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: मन ये है कि हो रघु भैया जैसे 1 लाख का सामान लेते हैं तो कतो कतो 70% भैया छूट मिल जाता है,
1: अच्छा अच्छा
0: कतो कतो 50% के मिल जाता है, तो ऐसे ही है कि किसान भैया बहनी हरिन के कम लागत में उन्हें कम से अच्छा काम से सामान मिल जाता है और हमेशा जानकारी भी
1: अब देखो
0: रहता है।
1: किसान भैया, अरे ये योजना के जरूर लाभ उठाएं भैया,
0: हाँ हाँ
1: जो किसान भैया पंजीकरण ना कराए हो
0: हाँ
1: करवा लें भैया, ताकि
0: ये
1: सरकार के योजना के लाभ हो।
0: एकदम कही गया भैया। अच्छा आज अपने पंचायती में क्या क्या है हो रघु
1: भैया
0: भैया।
1: देखा आज बुधवार बाटे भैया, और हर बुधवार जो है नीति वचन बटे, तो
0: हाँ
1: भैया देखा आज सियाराम मिश्र के नीति वचन सुना चाहिए,
0: हाँ हाँ
1: और साथ
0: हाँ
1: ही साथ भैया देखा किसान चर्चा में
0: हाँ
1: पन्ना लाल से जो है प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत बाटे, ये सुना चाहिए।
0: अच्छा।
1: मुला भैया हम कहीं पहले कुछ गीत गवनी हो जाए।
0: हाँ हाँ बिना देखा ढोल मजीरा के निक नाला गए तो ताज दीनानाथ यादव और संघाती के भैया विकास गीत है, हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरिन को सुनवाई दिया जाए।
1: सुनवा दे भैया।

0: राम राम।
1: का हो रानू भैया, का हाल चाल बटे?
0: ठीक है हो रघु भैया, देखत है ये बखत दौ रजा एकदम ललकारे हैं।
1: हाँ भैया, देखा मऊ आओ तो देखा भीग गए भैया है।
0: हाँ, और बताओ हो खेती किसानी के का हाल समाचार है रघु भैया?
1: भैया देखा खेती किसानी ठीक है चलत बाटे भैया।
0: हाँ,
1: धान के नर्सरी भैया तैयारे बटे हैं,
0: हाँ,
1: बस लगावे की देरी बाटे भैया।
0: अरे कुछ तो किसान भैया भैया लगाओ दिए हैं। अच्छा एक बात और है।
1: हाँ बोला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया देखा, लोकगीत सुना का भैया दीनानाथ यादव और साथी के बड़ा निक रहा भैया, और साथ ही साथ भैया देखा संदेश होगा।
4: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और है,
3: बोला भैया।
4: देखा किसान भैया बहनी हरण के खेती के अलावा भैया जो देखे मजदूर वर्ग है,
3: हाँ भैया,
4: उन्हें भैया कमाई विदा कनम से बहरी जाए को होता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो अब का है कि भैया पहले तो जो रोजगार रहन 100 दिन के मनरेगा के तहत भैया, अब भैया ओकर नाम बदल के बी जी राम जी हो गए हैं।
3: हाँ भैया, एक भैया पूरा नाम बांटे, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के गारंटी मिशन योजना।
4: एकदम सही के। तो अच्छा एक बात और रहे हूँ भैया, देखे अब का है कि साल भर में भैया जो 100 दिन का काम मिले रहन, वो भैया 125 दिन के मजदूरी के रोजगार के गारंटी मिल गए। और साथ ही साथ एक बात और रहे हो, जो पहले 241 रुपया किसान भैया के मिलत रहन,
3: हाँ भैया,
4: अब भैया 300 रुपया मिले लगा। कुछ ऐसा भैया प्रदेश है जहाँ भैया 300 से अधिक भी मिले।
3: हाँ, जैसे भैया हरियाणा भा, आपके केरल भा,
4: हाँ हाँ,
3: 400 के ऊपर बांटे भैया।
4: हाँ,
3: अब भैया पहले जो है काम सीमित रहा था,
4: हाँ हाँ,
3: अब भैया काम के ज्यादा मौके बांटे।
4: हाँ हाँ हाँ, ये तो एकदम सही कहते हैं। तो हम ही कह भैया किसान भैया बहनी हरे, देखे खेती बाड़ी से जब भाई खाली होते हैं,
3: हाँ भैया काम बढ़े तो आमदनी का सहारा हाँ, बढ़ जाए,
4: तो भैया खाली रहते हैं, जैसे जेठ बैसाख में भैया कुछ ना कर रहते हैं, जो उन्हें समय अनाज ना बोए हैं, वो समय ये होता है कि अपन भैया 125 दिन का गारंटी जो योजना है उमन भैया पंजीकरण कराए के हैं, उनका लाभ ले सकते हैं।
3: और पहले भैया भुगतान देरी से होता रहा भैया, जो है अब हर हफ्ते भुगतान होता भैया,
4: हर हफ्ता भुगतान होता और उनके अकाउंट में आवत है।
3: हाँ भैया।
4: अच्छा एक बात और है भैया, जो उन पहले से साहूकार रहे, सेठ साहूकार भैया, भैया देखे पैसा न रहे किसान भैया बहनी हरण के, तो उनके ब्याज ही दे दी।
3: हाँ भैया, कर्ज पे ब्याज ले गया। हाँ, आर्थिक तंगी रहती
4: है, आर्थिक तंगी रहती है, ऐसे ही रहे कि भैया उनकर भैया शोषण होता रहन।
3: हाँ,
4: लेकिन अब यह है कि योजना से यह है कि किसान भैया बहनी हरण के जो मजदूर समाज के लोग हैं,
3: हाँ हाँ,
4: उन्हें भैया इसे ना गुजरे होते हैं।
3: कैसे भैया पहले जो है महीना महीना मिलत रहा है,
4: हाँ हाँ,
3: अब हर हफ्ते मिलत भैया, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रही है भैया।
4: हाँ हाँ,
3: मजबूत रही है भैया।
4: एकदम सही कह भैया। तो आज अच्छे भैया देखे दिन है बुधवार।
3: हाँ भैया।
4: तो बुधवार के भैया देखे नीति वचन हो लो।
3: अच्छा भैया।
4: और आज भैया सियाराम मिश्रा भैया के काम से नीति वचन है। हम चाहब कि भैया किसान भैया बहनी हरे ओके सुने गुने और उसे अपने जीवन में भैया एक नया काम से परिवर्तन लिया हुआ।
3: बिल्कुल भैया सुनवा दिया।
5: समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, समाज के मार्गदर्शक महामनीषियों द्वारा समाज को जो नैतिक बातें मार्गदर्शन हेतु बताई गई हैं, उन्हें नीति वचन के नाम से जाना जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी, रहीम दास जी, चाणक्य, विदुर, भर्थरी आदि महापुरुषों ने विभिन्न माध्यमों से समाज को जो नैतिक मार्गदर्शन किया। मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा कि राम से बैर मत करो, तब मारीच ने यह सोचा कि इसको समझाने से समाज का हित होगा, परंतु रावण ने मारीच को मारने की बात

कही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मरीच के माध्यम से संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन किया कि तब मरीच हृदय अनुमाना और न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। मरीच ने अपने मन में विचार किया कि नौ प्रकार के व्यक्तियों से विरोध करना उचित नहीं है, जिसके हाथ में शस्त्र हो, जो अपना मर्म जानता हो, भेद जानता हो, अपना जो स्वामी हो, जो मूर्ख हो, धनी हो एवं वैद्य हो, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सेवकों से, कवि से और अपने रसोइयां अर्थात भोजन बनाने वाले इन नौ व्यक्तियों से बैर करना हितकर नहीं होता। सूपनखा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को नीत निर्देशक तत्व दिए। सूपनखा रावण से कहती है कि करसी पान सोवसी दिन राती, असुधि नहीं तब

मारीच ने अपने मन में विचार किया कि नौ प्रकार के व्यक्तियों से विरोध करना उचित नहीं है। जिसके हाथ में शस्त्र हो, जो अपना मर्म जानता हो, भेद जानता हो, अपना जो स्वामी हो, जो मूर्ख हो, धनी हो एवं वैद्य हो, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सेवकों से, कवि से और अपने रसोइयां अर्थात भोजन बनाने वाले इन नौ व्यक्तियों से बैर करना हितकर नहीं होता। सूपनखा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को नीत निर्देशक तत्व दिए। सूपनखा रावण से कहती है कि करसी पान सोवसी दिन राती, अशुधि नहीं तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेगी नीति यस सुनी, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय नहीं छोट कर, अस कही विविध बिलाप कर लागी रोदन करन। सूपनखा ने रावण को डांटते हुए कहा कि तुम मद्यपान करके दिन रात सोते हो, तुम्हें पता नहीं शत्रु सर पर आ चुका है। यह कहते हुए सूपनखा ने रावण को नैतिक उपदेश दिया। नीति के बिना राज्य नष्ट हो जाता है, धर्म के बिना धन नष्ट हो जाता है, भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म नष्ट हो जाता है, बिना विवेक की विद्या अर्थहीन होती है, यति साधु को यदि कुसंग मिल जाए तो वह नष्ट हो जाता है, दुष्ट मंत्री से राज्य नष्ट हो जाता है, अभिमान से ज्ञान नष्ट हो जाता है और मदिरा पान से लज्जा नष्ट हो जाती है, अहंकार से गुण नष्ट हो जाता है। इसलिए इन चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। और साथ ही सूपनखा ने यह भी बताया कि रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय नहीं छोट कर, शत्रु को, रोग को, आग की छोटी सी चिंगारी को, पाप को और अपने स्वामी को तथा छोटे से सपेलों को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। राजा प्रतापभान के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नीति की बातें बताई। राजा प्रताप भानु जिस समय कपटी साधु से मिलते हैं और वह कपटी साधु उनका परिचय पूछता है, उस समय राजा प्रताप भानु ने अपना परिचय छिपाते हुए कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का सचिव हूं, कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग्य देखेऊ पगयाई। कपटी साधु भी नीत की बातें बताते हुए राजा प्रताप भानु से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम ही राजा प्रताप भानु हो, परंतु यह नीति है कि कभी राजा अपना परिचय सर्वत्र नहीं देते, तुमने अपना परिचय छिपाया है, यह जानकर मुझे अच्छा लगा। कि सुनु महीस अस नीति, जह तह नाम न कहि नप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। हे राजन, यह नीति है कि राजा सर्वत्र अपना परिचय नहीं देते, और अब तो अपना सर्वत्र परिचय देना चाहिए। भगवान श्री राम के द्वारा समाज को बड़े बड़े मार्गदर्शन दिए गए। एक बार भगवान श्री राम ने सारे पूर्ववासियों को बुलाकर एक सार्वजनिक रूप से सभा आमंत्रित की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ नैतिक उपदेश आपको देना चाहता हूं, और अगर मैं नीति से हटकर कुछ कहूं तो तुमको ये पूर्ण अधिकार देता हूं कि भयमुक्त होकर मुझे रोक देना। और उन्होंने कहा कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहउ न कछु ममता उरयानी, जौ अनीति कछु भाखउ भाई, तो मोहि बर जेउ भय बिसराई। रहीमदास जी के द्वारा भी समाज को नैतिक बातें बताई गई कि रहीमन

रखिए गोय सुनी अठिलई है लोग सब बाटी न लई है कोई। रहीम दास जी कहते हैं अपने मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए, उसे कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनकर तत्कालीन अफसोस कोई भले व्यक्त कर दे परंतु उससे कोई बांट नहीं सकता। अपना कष्ट प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही वहन करना पड़ता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं जो उत्तम प्रवृत्ति का है उसे कभी कुसंग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चंदन के वृक्ष में सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, इसके पश्चात भी चंदन के वृक्ष पर कभी सर्पों का विष का प्रभाव नहीं पड़ता। कहू रहीम कैसे निभय बेर केर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। रहीमदास जी कहते हैं विपरीत स्वभाव वालों के साथ कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, उनका साथ कभी निभ नहीं सकता, इसलिए विपरीत स्वभाव वालों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी भी यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब भी मित्रता हो चाहे बैर बराबर वालों से करना चाहिए, कि प्रीति विरोध समान सन कही नीति अस आही, जिमि खग पति हत मेढुकन भल की कहई कोतासु। तुलसीदास जी कहते हैं मित्रता और दुश्मनी समान व्यक्ति से होनी चाहिए, क्योंकि इनमें कभी भी अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे गरुण यदि पतिंगों को मारे तो इसे कौन अच्छा कहेगा। रहिमन मोहिन सोहाय अमिय पियावत मान बिनु, जौ बिस देई बुलाय मान सहित मरिबो भलो। रहीमदास जी कहते हैं अगर सम्मान रहित अमृत प्राप्त होता है तो उसे त्याग देना चाहिए, और सम्मान पूर्वक अगर कोई विष देता है तो उसे सम्मान सहित प्राप्त करना चाहिए। सम्मान सहित जहर पीना असम्मानजनक अमृत पीने से अच्छा है। मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सम्मान पूर्वक विषपान करने से भगवान शंकर को महान यश प्राप्त हुआ, और उसी जगह असम्मान पूर्वक अमृत पान करने पर राहु को अपयश प्राप्त हुआ और उसका सर काट दिया गया। आवत ही हर सै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेह। जहाँ पहुँचने पर सम्मान न हो वहाँ भले ही स्वर्ण की बरसात हो रही हो नहीं जाना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की स्पष्ट बात है कि भलो भलाई पै लहई लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही उमीच। भले व्यक्ति को भलाई अच्छी लगती है, नीच व्यक्ति को नीचता अच्छी लगती है, अमृत को अमरता और विष को मृत्यु अच्छा लगता है। कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, अगिर निज सिरन सदात्रन धरही, जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग सदैव छोटे पर स्नेह करते हैं, उन्हें अपने सर पर धारण करते हैं, जैसे विशाल पर्वत अपने सिर पर अनगिनत तिनकों को धारण करता है और कभी भी भार की अनुभूति नहीं करता। अगाध समुद्र के ऊपर फेन बहता रहता है, यह समुद्र के बड़प्पन को प्रकट करता है, तथा पृथ्वी कितना विशाल होते हुए भी रजकणों को अपने मस्तक पर धारण करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे सदैव छोटे लोगों को शरण देकर उनका सम्मान करते हैं। प्रकृति की ये तत्व पर्वत पृथ्वी और समुद्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। रहिमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाहि, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। कभी

0: हेमदास जी कहते हैं कि जिनके मन में किसी के सामने हाथ फैलाने की प्रवृत्ति नहीं है वही सर्वोत्तम है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अर्थात किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। किसी के सामने हाथ फैलाने वाला व्यक्ति मृत प्राय होता है, मृत तुल्य होता है, और वो व्यक्ति जिसके सामने हाथ फैलाया जाए अगर उसने इनकार कर दिया तो वह उससे पहले मृत तुल्य माना जाता है। रही मन विपदा हू भली जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा अच्छी है, क्योंकि विपत्ति के समय हित और अनहित करने वालों को पहचानना आसान है। क्योंकि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित। वही सच्चे मित्र हैं जो विपत्ति के समय साथ दें। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय साथ देने वालों की संख्या बहुत अधिक रहती है, परंतु विपत्ति के समय साथ दे वही सच्चा मित्र है।
1: हाँ भैया, देखा नीति वचन रहा।
2: हाँ हाँ,
1: सियाराम मिश्र जी के।
2: हाँ हाँ,
1: बड़ा निगरा, बड़ा फरिया
2: एकदम सही कहे। अच्छा ऐसे भैया किसान भैया बहनी हरे सुनिए और एक लाभ लेंगे। अच्छा एक बात और रहे हो, देखे भैया समय समय पे अपने किसान चर्चा में कृषि विशेषज्ञ भैया हरे आवत हैं।
1: अच्छा
2: ऐसे ही है कि किसान भैया बहनी हरिन के काम से समय समय पे भैया लाभ मिले थे, तो आज भैया किसान चर्चा में पन्ना लाल से प्रवीण कुमार मिश्रा भैया का बातचीत है। हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरिन को सुनवाए दे।
1: भैया
3: किसान भाई, हम कहीं खेती किसानी में देखा अपन अनुभव बहुत मायने रखा था, हम कहीं एक दूसरे के अनुभव से अगर खेती किसानी कीन जाए तो निश्चय रूप से ओकर फायदा बांटे। तो यही खातिर देखा आज अपने बीच में किसान है भैया पन्ना लाल, आप गांव पूरे छेमी धनीपुर मानधाता प्रतापगढ़ का रही वाला है, खेती किसानी में इनका लंबा अनुभव बांटे, कह तरह से खेती किसानी करता है भाई, का इनका वैज्ञानिक तरीका अपनाता है, आज अपने बीच में है, इनका अनुभव हम आपके बीच साझा करब। पन्ना लाल जी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले अपन किसान भाइन के लिए बतावें कि का खेती बाड़ी करता हूँ।
4: अरे भैया, जब गेहूँ कटाए है तो समझ लें कि ढाँचा मूंग बोआए दी, ढाँचा मूंग बोआए और जौन आलू खुदा रहे हम मूंग और उड़द बोआए दी, अब बाकी खेत जौन बचा हमारा ढाँचा सनाई सहाय दीन।
3: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: यह बड़े सदाय दीन भैया। किसान भैया बहनी से कहा चाहिए था कि जौने की रसायन खाद न डाली जाए।
3: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: रसायन खाद से यूरिया डीएपी से खेत खराब हो जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात यह।
4: तो हम ही सलाह देते हैं किसान भाई बहनन का कि अब वही दौर रहा धान का, धान दस बीघा लगाए है भैया।
3: अच्छा अच्छा,
4: और सब सनई ढैंचा साल की ऐसे का हो तो भैया किसान भैयान का हम बतावा चाहते है कि लागत कम लागे और फायदा ज्यादा हो।
3: ये बात सही कह भाई, हम कहीं देखा जो सनई ढैंचा आप अपने खेत में बोया उसके बाद वो पानी भर कर सराय जाए तो खाद के रूप भाई काम करे जाऊना है, तो ये जानकारी कहाँ से मिली रही?
4: कृषि विभाग से भैया।
3: अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। और बतावा कि धान के जो खेती करे है कैसे करे है, कितना रकबा बजाना है पूरों का?
4: अब 10 बीघा धान लगा है भैया, बाकी माँ तरकारी
3: अच्छा,
4: सब्जी के खेती के है।
3: अच्छा, अच्छा।
4: कुछ बाग बगीचा है भैया, तो समझ लें कि तैयारी यही प्रकार से की नहीं भैया।
3: अच्छा अच्छा,
4: साज के सनई और लागत बहुत कम लाग भैया।
3: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: और धान ये आप समझें कि लगाए है ये कामिनी और एक नाथ है, लगाए है मोटा माँ और कामिनी महीन लगाए है, और परों साल लगाए रहे भैया, अब क्यों लगाए है?
3: अच्छा का है मतलब इबा कि जो मोटिया और पतरा दोनों चावल के आप खेती करा था तो कितना कितना मोटका लगाया है और कितना कितना पतला वाला धान लगाया?
4: अभी समझ लें कि 4 बीघा महीन लगाए है, 6 बीघा मोटका लगाए भैया, यह बड़े कि थोड़ा पैदा ज्यादा हो।
3: अच्छा अच्छा,
4: मोटकोवा ज्यादा पैदा हो था तो 4 पैसा का आमदनी ज्यादा बढ़ गया था, अब महीन का थोड़ा कम हो था, अभी समझ लें कि

0: पर साल झुराए पखाए झारे मोटका कम से कम 19 कुंतल।
1: अच्छा, मतलब पूरा काट छांट के होकर जो ना
0: हाँ,
1: सफाई करेगा।
0: और माना जाए 20 नहीं तो 19 कुंतल झारे बहारे एकदम ओसाए पथियाए 19 कुंतल भरा भैया।
1: अच्छा,
0: और महीन का भैया झारे बहारे जान ला 17-18 कुंतल।
1: अच्छा,
0: महीन का
1: तीन।
0: महीन का बेचे रहे भैया, थोड़ा महंग बिचार था।
1: अच्छा, पैसा
0: हाँ
1: बढ़िया वहाँ मिल जाता
0: हाँ
1: है।
0: पैसा भैया मिल जाता। और खेती भैया जान लें कि बस केवल जैविक और देसी खाद, गोरू का खाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सीजन पर धान की सीजन में मूंग सनई ढाइचा सराई था।
1: अच्छा, हमके जब देखा 10 बीघा खेती बाटे तो ओके करे के खातिर सिंचाई चाहिए का प्रबंध है।
0: सिंचाई भैया आह ट्यूबवेल अपन खुद निजी है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो जब आवश्यकता हो तो अपन
0: आप
1: सिंचाई
0: चला
1: समझ
0: दे
1: के
0: थे
1: ले सक।
0: भैया। हाँ भैया हाँ
1: चलो ये बतावा भाई, जैसे ये तो धान के खेती है, अभी सीजन में तो भाई देखा बाजरा भी बोआ था, जोंधरी बोआ था, हाँ, तो यही सब की खेती करा था।
0: हाँ भैया हाँ मक्का बोए है भैया, मक्का बोए है।
1: कितना बोए हैं?
0: अरे ये जान लें कि 10-12 बिस्सा, ज्यादा ना ही
1: अच्छा, तो
0: बोए है।
1: का बिक्री के बिना रखे हैं कि मतलब?
0: अरे भैया सब ना बेचा तो 4 पैसा पाऊ कहाँ से
1: बिल्कुल
0: भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ तो ये जान लें कि मक्का बोए है, अब बाजरा की तैयारी हम करते हैं भैया बोए क्या।
1: अच्छा,
0: हाँ भैया शंकर बाजरा भैया।
1: तो तोरे
0: हाँ
1: क्षेत्र में भाई, जो प्रतापगढ़ के क्षेत्र है जहाँ पर, तो भाई हमके अभी तो बारिश के उतना ज़्यादा नहीं, न तो कुछ हल्का फुल्का बारिश भैया है।
0: हाँ भैया पानी पानी बरसा है भैया, पानी बरसा है। अब पानी न बरसा तो भैया कहाँ से ट्यूबवेल काम कर
1: बिल्कुल
0: पावेगा
1: बिल्कुल सही
0: भैया।
1: बात है। हमके देखा भाई, मक्का खेती कराता है, बाजरा के भी तैयारी कराता है, सरकार देखा मोटे अनाज के बढ़ावा देती है, तो मोटे अनाज को लेके का जागरूकता चला था आपके क्षेत्र में, किसान भाई से का कहा जा
0: ये
1: रहा?
0: जान लें भैया हम ही कहा चाहे किसान बहनिन से, गेहूं चाहो तो उपजाते हैं लेकिन मोटा अनाज जरूर उपजाऊ है। जैसे शंकर बाजरा भा, अरहर भा, हाँ ये मटर भा, मतलब सब मोटा अन्न, मोटा अन्न जो ना है भैया बहुत ठोस पाता है।
1: नहीं भाई देखा, मोटा अनाज तो भाई होते ना, सामा है, मकरा है, कोंदौ है, तो इस तरह के खेती बाटे भाई। दलहनी फसल तो खैर अलग बाटे जौन
0: हाँ
1: है भाई, अरहर और मटर सब दलहनी में आवत जौन है। तो ये बतावा कि खेती किसानी के साथे साथे बाग बागवानी भी बाटे आपके?
0: हाँ भैया बाग बागवानी है। अभी जान लें कि आम है, महुआ है, कटहर है,
1: अच्छा,
0: आंवला है।
1: कितने बीघा हम आपके बागीचा बांटे भैया?
0: अबे जान लें कि ज्यादा ना ही ना भैया,
1: मतलब अपने
0: बहुत
1: प्रयोग भरे को ही
0: हाँ
1: जात।
0: ज्यादा रहा भैया आन्ही बौखो में सब टूट गए पेड़ों,
1: अच्छा,
0: सब टूट गए भैया। तो नवा नवा पेड़ लगाए भैया, सब मिला जुला के ये जान लिया 20 पेड़ भी 22 पेड़ भी
1: अच्छा,
0: आए।
1: कुल मिला के अपने निजी उपयोग के लिए बागवानी बटे वो हो जाता है, जो बचा था तो बिक्री के लिए भी होता
0: ना
1: है।
0: ही भैया बोला के कुंजरा बेचाई ने, अब लगाए ही भैया, अब वो खेती बाड़ी नहीं होती है तो किसान मने 4 पैसा पाऊ कहाँ
1: हाँ
0: से।
1: सही बात है। तो पशुपालन भी करे है?
0: हाँ भैया 3 भैंसा हैं भैया और 2 गाय हैं भैया, एक छोटी पड़िया है।
1: अच्छा,
0: हाँ जान लें कि जैव ये जिराती खाद हमका डवाइन के नाही हो, बहुत हल्का फुल्का भैया डाई थे। ये फरात हो जात है गोरुए के खदिया, बहुत खाद।
1: तो जैविक खाद अगर प्रयोग करा था तो एक तैयारी कैसे करा था जैविक खाद के लिए? देखा आजकल सरकार भी है बात पे जोर दे दिया है कि भाई जो रसायन खाद बा ओकर कम से कम प्रयोग करे, अब हो सके तो ना करे, जैविक जो ना अपन पुरानी पद्धति बा वही हिसाब से खेती
0: हाँ
1: करे।
0: भैया हाँ
1: तो आप जो जैविक को लेके इस तरह से बतावता है कि भाई आपके यहाँ गाय गोरु वहाँ पशुपालन भी कराता है भाई, सनई ढैंचा से भी गलाय देता है, तो जैविक खेत और का तैयारी करा था कैसे खेती के समय पे, जो ना जब भाई धान लगाओ से पहले का करा है और आगे के जो फसल बा ओके बिना कैसे कर बा?
0: भैया पहलो ढील दी ही रहे ना, देसीवा खदी वो पहलो डाल दी ही रहे। जैसे सीजन आ जात भैया, जैसे आलू का सीजन आ जाए देसी खाद पड़ जाती है भैया, कुछ जैविक डाल देते हैं, कुछ जिराती डाल देते हैं कि जिराती बहुत कम।
1: अच्छा,
0: अब अभी

0: जैसे धाने खेत आएगे तो हरी खाद दे दे दो भैया, ओमा रसायन खाद बहुत तनिक डाल दे, गलाई गुलाई के अगर गल
1: अच्छा
0: जाए।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: तो दूध भी उत्पादन पशुपालन से
0: हाँ
1: अच्छा
0: भैया, दूध हो गया था। अब जान ला के दो भैंसिया जो नहाए, एक कोई कम दे था एक कोई ज्यादा दे था, तो कुछ तो बेच दे थे गाँव वाले ले ले, अगल बगल के ले ले हैं, चाहे के ले ले हैं, और कुछ के ले ले हैं ना ही बाकी सा। भैया हम डेयरी पर दे दे था तो उही के भैया चूनी चोकर आ जात पैसों का,
1: अच्छा अच्छा
0: चार पैसा फायदा हो गया था।
1: तो कितना आमदनी हो जाता दूध से?
0: अब जान ले भैया आमदनी से कम बहुत कम नॉर्मल माना जाए भैया तो 6-7-8 हज़ार से कम महीने में नहीं आवत
1: अच्छा,
0: भैया।
1: दूसरा एक बात ये बताऊं, जिसे धान के बताए कि 10 बीघा हम पतला महीन दोनों लगाया है,
0: हाँ
1: तो उसे का उम्मीद बा कि आगे कितना तो उसे बचत हो जाए फसल
0: अब
1: से?
0: भैया वे वो बचत तो हम तो उम्मीद बहुत ढेर लगाए है, हम 20 कुंटल तक अंजाल लगाए है 18। हाँ अब देखा भैया जैसे पानी के मन को हो या बरसात के मन को हो, हाँ नॉर्मल हो सका तो बरसात, अब बरसात हो जाए भैया तो किसान का हरी हर रहा
1: हरी हर रहे, सही कहा बिल्कुल।
0: है।
1: और ये बताओ और काका प्रयोग कर रहा है भाई, सब्जी उब्जी भी उगावा तो?
0: सब्जी में भैया नेनुआ, तरोई, कोहोड़ा, लौकी, लौकी या समय खूब बेचे भैया।
1: अच्छा, कितना तक बिक्री कर ले जाए?
0: अभी जान लें कि लौकी कुछ बाजारों ले जाते हैं, कुछ साइकिलिया बोरिया में भर के बेच दे अड्डा अड्डा,
1: मंडी पे? हाँ
0: हाँ मंडी में भेज दे भैया।
1: अच्छा।
0: हाँ और नेनुआ अब है फुलाता है, फूल पर है, कोहड़ा तरोई कुछ बतियाता हुआ है, लेकिन भाई फूल है पे आए भैया।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: नहीं तो ठीक है, हमके सब्जी भी उत्पादन कर रहा था। और बागवानी भाई, और खेती किसानी में का नया प्रयोग करे है आप?
0: नया भैया प्रयोग यही है, संकर बाजरा सोचते हैं भैया, मोटा अनाज।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: देखिए
0: भैया
1: उन्हें जागरूकता कार्यक्रम तमाम तरह चला जात बाटे, तो
0: हाँ
1: कैसे कर जानकारी भाई कि हमका मोटा अनाज बोआ चाहिए?
0: हम भैया सब कृषि इकाई से पता करी भैया,
1: अच्छा
0: का
1: अच्छा
0: बो है क्या, कैसे का करे क्या है। हाँ भैया
1: अच्छा ये बताओ, खेती किसानी में अपन मिट्टी उट्टी की जांच करावत है?
0: हाँ भैया, मिट्टी की जांच तो कराई थी भैया, लेकिन मिट्टी की जांच कराए जरूर भैया, लेकिन वहाँ थोड़ा कमी निकली रही ही, ये क्या कहते हैं, थोड़ा कमी निकली, हम का कमी पूरा कई दिन यही खादिए से भैया।
1: अच्छा, मतलब का है, मतलब कि जो वैज्ञानिक तरीके से जांच भाई, तो वैज्ञानिक भैया ने बताएं कि तोहरे जो खेत बा एहमे तत्व तो के कमी बा, ऐसे डाय से पूरा हो जाए, मतलब हरी खाद से या देसी खाद से उन तत्व तो की पूर्ति हो
0: हाँ
1: जाए।
0: भैया हाँ, सल्फर कुछ कमी रही भैया।
1: हाँ तो वही चीज़ है
0: हाँ
1: ना।
0: भैया
1: तो दूसरा एक बात ये बतावा कि सरकार देखा कृषि विभाग के तमाम तरह की योजना चलावती बाटे,
0: हाँ
1: तो
0: भैया
1: कृषि विभाग से सरकारी के तरह की योजना का आपके लाभ मिला बाटे? चाहे भाई कृषि यंत्र की अगर बात किया जाए या अन्य तरह के बीज के भी सहायता मिला था, तो बताओ के बारे में थोड़ा सा किसान भाई के लिए।
0: हम भैया किसान भैया का बतावा ही चाहिए था कि बिया जब मंगावे तो सरकारी गोदाम से मंगावे,
1: अच्छा।
0: और बिया बहुत सूझबूझ के दे लियावे, और बिया बोवत कि बोवत समय ओका थोड़ा प्रयोग कर लें कि हाँ कमी का वहा जमाए के थोड़ा देख
1: बिल्कुल
0: लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो ये बतावा कि भाई सरकार देखा किसान के खेती बाड़ी के लिए हर तूर जौन है समय से पहले कुछ आर्थिक सहायता भी देते थे जौन है भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलत है और भी योजना है, एके बारे में का कहा चाहता?
0: भैया, एके बारे में ही कहा चाहे था कि जवन सरकार दे दिया है भैया ओका लाभ उठावें किसान भैया, लेकिन लाभ उठा के अपने खेतों में लगावें।
1: तो मतलब कहे मतलब ये बात कि देखा जब कोनो चीज के तरह से योजना चलत है, तो जो सरकार देखा समय समय पे साल पे 3 बार भी देती बाटे 2-2 हज़ार रुपये के खेती से पहले तो का मिल जाते बचे, धान के हो चाहे गेहूं को हो या जायद के हो भैया
0: का
1: तो।
0: भैया एक चीज बतावें आप, जब 2,000 रुपया गवर्नमेंट दे दिया है भैया तो खेतों के दे दिया
1: हाँ तो
0: है।
1: ओका खेती किसानी में कैसे तो का मदद मिलत? मान लो सब मिल जाता, खाद पानी प्रयोग करा था, कैसे करा था ओका?
0: ओका भैया हम खाद पानी में है, मान ला देसी खाद है या है, जरूरत पड़ गया बीयों पे सही लीन, जरूरत पड़ गया रासायनिक को थोड़ा

0: था ना, तो हुक पे सही लीन यह सब लगा दे दे भैया।
1: बिल्कुल। तो
0: हाँ
1: ये बताओ कि जौन इस तरह से सरकार के पैसा मिलता है तो किसान के लिए कितना मददगार बाटे जौन है।
0: बहुत मददगार है भैया, बहुत मददगार है। 2000 रुपया बहुत होत भैया। हाँ
1: खेती किसानी
0: भैया,
1: में बिल्कुल।
0: ऐसे समझा जाए भैया, तब ओका मजदूरों लगा लें, तब अपन छिटाई दें, खाद पानी लगवा लें।
1: काहे
0: हाँ
1: मतलब ही बाटे कि देखा सरकार चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो भी आर्थिक सहायता देती बा, उसे आप लोगन के या जो और भी किसान हैं उनका खेती किसानी में एक मदद मिल जाता तो निश्चय रूप से उनका एक सहायता हो जाता जो है।
0: हाँ भैया, हाँ
1: तो ट्रैक्टर उट्टर भी है भैया आपके यहाँ।
0: हाँ भैया, हाँ हाँ
1: तो
0: अब
1: जो
0: ये जान लें बेसहे रहे भैया, पुरान धुरान ट्रैक्टर
1: हाँ
0: वही से अपन काम होता है।
1: मतलब का अपन निजी जोताई कार कम्बा उसे हो जाए
0: हाँ
1: भैया।
0: निजी हो जात भैया। हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कहूँ दूसरों को भी जोताई के कुछ
0: अरे अब
1: आर्थिक
0: जैसे
1: तो
0: जरूरत पड़ गया क्यों कहा इलाक भैया,
1: कुछ चार पैसा मिल भी जाए।
0: चार अरे 4 पैसा मिल जात पिटर, डीजलवा कहाँ से आए भैया।
1: हाँ बात तो
0: हाँ
1: सही। तो हम कहीं अपने किसान भाइयों के लिए का संदेश दे चाहता हूँ।
0: हम संदेश देवा चाहे थे अपने किसान बहनिन से
1: हाँ
0: कि खेत खाली न रखें भैया,
1: हाँ
0: कुछ मु कुछ 12 महीना बोए। और किसान भैयन से ही कहा चाहते हैं सब चीज खेती करें, लेकिन सब्जी के जरूर खेती करें भैया, एहमा लाभ बहुत है भैया।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: भैया
1: तो हम कहीं देखा पन्नालाल जी आप आएन और अपन जो खेती किसानी के अनुभव बाटे वो साझा करें। निश्चय रूप से जो किसान भाई यहाँ हो चाहे जैविक खेती की बात हो चाहे सब्जी के खेती के बात हो वो हिसाब से अपन खेती किसानी में आपके अनुभव साझा कर रहे हैं उससे उनका लाभ हो आप आएन हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया देखा,
1: हाँ
2: किसान
1: हो
2: चर्चा रही भैया। देखा
1: हाँ हो रघु भैया।
2: पन्ना लाल जी बड़ा फरिया फरिया बतियाइन भैया। हाँ
1: हाँ हाँ
2: और
1: हाँ
2: भैया प्रवीण कुमार जी भी बड़ा फरिया फरिया पूछने उनसे।
1: ये तो सही कहो ऐसे किसान भैया बहनी हरे लाभ लेंगे हैं और जो उन्हें हिसाब से भैया पन्नालाल भैया बताए हैं
2: हाँ अपन अनुभव
1: उस
2: बताए ना।
1: हाँ हाँ वही से अगर प्रयोग करते हैं तो उनकर काम से आमदनी कम
2: बिल्कुल।
1: और बचत ज़्यादा हो जाए। अच्छा एक बात और रहे हो
2: हाँ बोला भैया।
1: देखे अपने कार्यक्रम जो हमारे पंचायत घर हमारे सब जाते हैं वो मन ये है कि जैसे किसान भैया बहनी हरन के कैसन लगत है और जोन भी श्रोतागण हैं
2: हाँ
1: तो उन अपन प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वो अपन
2: बिल्कुल।
1: व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2502। एक बार फिर से हम रिपीट करते भैया
2: हाँ भैया।
1: 800-4926-2502। तो भैया देखा पंचो हरन से विदा लेवे एक समय होता टे पंचो
2: राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम है 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार, मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1,200 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक

0: सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1,00,00,000 का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1,00,00,000 का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा ये अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग

0: कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर दो दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहाँ के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
1: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का है, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की।

0: नमस्कार नेहा जी, और हम दोनों ही मिलकर नमस्कार करते हैं अपने सभी दोस्तों को, साथियों को।
1: बहुत नमस्कार आप सभी को। वंदना जी और दोस्तों, आपने कभी बूंद, पानी की बूंद ध्यान से देखा है? बूंदों को
0: बहुत बहुत ध्यान से देखा है, महसूस भी किया है, हथेलियों पर उसे बंद भी किया है नेहा जी।
1: अच्छा, वो जब बूंद स्पर्श करती है तो कैसा लगता है?
0: सिहरन सी जागती है एक, और उसका जो स्पर्श होता है बहुत ही शीतलता से भरपूर होता है, और राहत बख्श होता है।
1: राहत बख्श होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना सा है। और जो आप कह रहे हैं सिहरन, सोचिए एक बूंद में इतनी ताकत है कि वो हमें जगा देता है। नहीं, मैंने छुप करके आपसे एक गाना सुन लिया है।
0: ओ, ये तो बहुत गलत काम किया नेहा जी।
1: असल में जब मैं वो गाना सुन रही थी तो ये जो बूंद वाली आपने बात कही ना, ऐसा ही महसूस हुआ मुझे।
0: अच्छा, तो क्या ये गाना बारिश से संबंधित है?
1: नहीं, उसका कुछ हिस्सा नदी में शूट किया गया है, हुगली नदी के आसपास। मुझे लगता है आप पहुंच जाएंगी। ये उसमें शर्मिला जी नहीं है।
0: ओ ओ,
1: ठीक है, उसमें विद्या बालन है।
0: ओ, हावड़ा ब्रिज दिखाया गया है।
1: हाँ, दिखाया गया है।
0: अच्छा, कुछ कुछ पहुंच रही हूँ।
1: हाँ, और जरा देखिए, जब सांझ का वक्त होता है और रंग भी, लोग अपने काम से मुझे लगता है थोड़े विरत हो जाते हैं, और एक समय होता है जब वो कुछ रचने बैठते हैं। एक कमरा है बहुत ही प्यारा सा, जिसमें सैफ अली खान है, और जब वो धुन बनाते हैं पियानो पर बैठकर, तो वो कहते हैं कि यू आर माइन, से यू आर माइन। अब वो कहते हैं इससे काम नहीं बनेगा, अब इस पे कुछ शब्द, फ्यू वर्ड्स, मतलब इतना बढ़िया है दो लोगों का रिश्ता, वो किसी बंधन में नहीं है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे चौखट के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन चौखट के अंदर, यानी कि प्रेम के अंदर नहीं डूबे।
0: बहुत सारी बातें और भी हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस गीत से जुड़ी हुई, जो कि हम आगे बताएंगे, लेकिन मैंने पूरी तरह से पहचान लिया है। अब मैं प्ले करती हूँ ये गीत, और आप ये बताइए कि ये वही गीत है जो दिल में आपके बातें उठ रही हैं, वो कुछ कुछ इससे मिलती जुलती है।

0: यही गीत है। ऐसा लगता है स्वानंद करकरे जी ने कितना सुंदर उन भावों की बयानी की है। पीयू बोले, क्या ये बोले जानू ना, मतलब कुछ हो रहा है लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
1: और ये जो शानदार सा गीत है जो दिल को छू जा रहा है, और इस गीत को जब हम देखते हैं पर्दे पर नेहा जी, तो इतनी बढ़िया केमिस्ट्री दोनों की दिखाई जा रही है, सैफ की और विद्या बालन की, कि जिस तरह से वो रच रहे हैं संगीत, वैसे वैसे वो गीत को बनाते हुए मन के भावों को वो एक रूप एक आकार दे रही हैं, जिसमें कि उनका भी कहीं कुछ जो दिल है वो भी धड़कता हुआ सा दिखाई सुनाई पड़ रहा है। अव्यक्त रूप में जो प्रेम को प्रदर्शित करने की बात होती है वो इस गीत में भी समाई हुई है। और ये बंगाली जो उपन्यास, महान उपन्यासकार थे शरद चट्टोपाध्याय जी, जिनका की बांग्ला ये उपन्यास है परिणीता, और उस पर ये फिल्म बनी थी। और हाँ, इस फिल्म से जुड़ी हुई एक बात और भी है नेहा जी, जो जी।

जुड़ी हुई है वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन बाद में पहले इस जो ये जो लाइन आ रही है कितनी खूबसूरत सी है, कितनी चंचलता से भरपूर है और मन को भी तरंगित कर रही है, वो सुन ले।

0: वंदनी जी, जब आप कह रही थी कि ये जो लाइन आ रही है बहुत ही खूबसूरत है और मन को तरंगित करने वाली है, तो मैं वहीं रुक गई थी कि ज़रूर इसमें कुछ ख़ास बात होगी। जैसे ही श्रेया गाती हैं, मैंने पूछा एक नदी से
1: बलखा के चल दी,
0: हाँ कहाँ, तो वो कहती हैं कि सागर से मिलने का सपना है। पहले वो घबराती है, फिर इठलाती है, उछलती है, फिर धीरे धीरे पहुंच जाती है। तो ये एक बात जो स्वानंद करकरे जी ने भी स्वीकार किया कि भाई कोई भी भाव आता है उसमें घबराहट भी होती है, लेकिन जो सपना है वो ही मुझे लगता है कि अल्टीमेट काम करता है। और ज़रा देखिए, इतने सुंदर ढंग से श्रेया घोषाल ने इन शब्दों को आवाज़ दिया है, मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ।
1: साथ ही साथ एक आवाज़ और भी है सोनू निगम की, जो कि मधुरता से भरपूर है। और
2: एक बात और भी आपसे साझा करना चाहते हैं कि परिणीता फिल्म 1953 में भी आई थी, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अशोक कुमार और मीना कुमारी ने। और 2005 में आई जिस फिल्म परिणीता की हम बात अभी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें विद्या बालन के अभिनय की चर्चा तो बहुत रही, साथ ही साथ शांतनु मोइत्रा का जो संगीत रहा वो इतना शानदार बन पड़ा है। वो जो बंगाल की मिट्टी की जो खुशबू होती है वो उनके संगीत में समाई हुई सी दिख रही है, और जो कि पूरी तरह से ये जो पूरा परिवेश है बंगाली परिवेश इस फिल्म में है, तो वो उसको उभारने में पूरी तरह से मदद करता है उनका ये संगीत, जो कि बे इंतहा खूबसूरत है। साथ ही
1: इसके शब्दों में उसका असर महसूस हम कर सकते हैं। और ये जो कहानी है, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, वो स्वानंद किरकिरे ने बखूबी किया है गीत के जरिए। और देखिए आगे जब अगर हम बात करते, जब मैंने कहा था कि मैं
0: एक बात बताएंगे,
1: हाँ एक बात बताएं जो मुझसे जुड़ी है, तो बस इतना कहना था मेरा कि जब मैं इलाहाबाद आई तब जो पहली फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी इलाहाबाद आने के बाद, वो परिणीता ही थी।
0: माय गॉड।
1: तो इसलिए इस फिल्म के साथ मेरा बड़ा ही एक अलग सा, एक तरह से कहते नहीं, एक रिश्ता बन जाता है, बहुत सुखद यादें इससे जुड़ी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
0: जी।

0: आप अंदाज लगाइएगा और चिट्ठी लिख भेजिएगा कि और कौन सा रिश्ता जुड़ा होगा जिससे कि एक नया रिश्ता इस फिल्म के साथ बनपा होगा। सुधीर श्रोताओ, ये एक क्लू है और मुझे पता है कि आप ये क्लू समझ गए होंगे। ज़रा देखिए, जब हुगली नदी पर ये गाना शूट हो रहा है और सैफ धोती पहने हुए हैं, चप्पू धीरे धीरे चल रहा है और विद्या उनके जस्ट घुटनों के पास हैं, है ना
1: जी।
0: और ये ख्यालों में हैं वो दोनों, असल में वो पियानो पे साथ में बैठे हुए थे लेकिन ख्याल में वो चले जाते हैं उस तरह, वो डूब जाते हैं। कहते हैं जब लोग डूबते हैं तो शायद अपने पन को याद करते हैं, तभी वो धोती पर आ गए और उन्होंने जो परिधान पहना वो साड़ी है।
1: नेहा जी, ये तो कहते हैं ना कि अपनायत वाली जो बात आपने की है ना, कि अपनेपन में जब हम व्यक्ति होता है तो वो अपनी मिट्टी को ही याद करता है और अपनी संस्कृति में, वो अपनी वेशभूषा में वो और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है दिलों के भी। तो ये वही भाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जब इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली है तो कोई दूसरा गीत भी दस्तक देने के करीब है और सामने नजर आ रही हैं शोक अल्हड़। बंगाल की भी हम बात कर रहे हैं तो बंगाल का जादू जो आंखों में समाया हुआ है जिनके, वो सांवला सा खूबसूरत सा जो रूप है वो है किसका?
0: विपाशा बसु का।
1: तो चलिए, गीत की आमद हो चुकी है तो गीत की गुनगुनाहट को, जो पहली गुनगुनाहट है, उसको श्रोताओं तक साझा करते हैं।
0: जरूर।
2: चाहा है तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

0: बहुत सुंदर। ये जो सोचिए कि आपका रिश्ता इस फिल्म से जो है बहुत सारी बातों को याद दिला रहा होगा आपको ना
1: जी।
0: वो फिल्म से तो एक रिश्ता है ही, और मैं सुधी श्रोताओं को कहूंगी कि इनका आना हुआ था इलाहाबाद तो

0: सच में ये जब गीत शुरू हो रहा था उससे पहले ये जो लाइनें सोनू निगम जी ने अपनी आवाज़ में कही कि चाह है तुझको चाहत से ज़्यादा, माना है तुझको मोहब्बत से ज़्यादा, मतलब एक चाहत होती है और एक गहरी चाहत होती है। पहले भी हम लोगों ने कहा कि प्रेम ने अभी दस्तक नहीं दिया है, हृदय में सिर्फ आहट भर है, यहाँ पर भी वही बात है कि वो जो एहसास है गहरे होने का वो अभी नहीं है। और जब कोई एक पक्ष अपनी बयानगी कर रहा होता है अपने भावों की और दिल दिमाग जहन में जो हलचल चल रही होती है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं जिसको सोनू निगम ने बखूब समझा है और अपनी आवाज़ के ज़रिए व्यक्त किया है। वंदना जी, लिखा किसने है?
1: फैज़ अनवर साहब ने इस गीत को लिखा है। और देखिए, हर बार बोलते हैं नगमे में ये बात उठती है कि जब शायर या कवि गीतकार बनता है तो उसकी जो रचनाएं होती हैं उसमें आप देखेंगे कि अलग सा एक गहरापन होता है, उसके जो अर्थ होते हैं, अर्थ के जो उसके जो मायने होते हैं बोल के, वो इतने असरदार होते हैं जो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं,
0: छूते हैं और ठहर जाते हैं ना
1: जी।
0: जब वो लिखते हैं कि तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कनें चुराए, ज़रा देखिए 24 घंटे में से सिर्फ पल दो पल की बात है और उस पल दो पल में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो धड़कन पहले

यादों में सिर्फ हम ही होते हैं, लेकिन जब किसी से मुलाकात होती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे प्रभावित हो जाते हैं, तो धड़कन वही होती है उसमें, लेकिन यादें और बातें दोनों लोगों की हो जाती हैं ना।

0: नेहा जी, जब हम इस गीत को सुन रहे हैं तो सोनू निगम की जो आवाज है वो किस तरह से इस गीत को इतना पुर असर बना रही है कि बस मन कर रहा कि इस गीत को हम सुनते जाएं और इस गीत में हम खो भी जा रहे हैं। और जिस तरह से सोनू निगम है सामने दिखाई भी पड़ रहे हैं, दृश्य में भी उन्हीं हैं, बिपाशा बसु के साथ में अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, वो प्रेम जो बस उन्होंने एक झलक जिसकी देखी है और उनकी धड़कनें बेतरतीब हो गई हैं। लेकिन देखिए, जब चीज़ें हमारे सामने आकर गुजर जाती हैं और फिर मिलने की तमन्ना होती है और वो मुलाकात नहीं हो पाती है तो हम बेबस से हो जाते हैं। सब कुछ वही होता है, हवाएं वही चलती हैं, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें वही होती है, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा, रूठा रूठा सा, उदास उदास सा लगता है हमको, क्योंकि वो जो एक ख़ास व्यक्ति है जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो ये उदासी का जो भाव है, वो भी जो बेकरारी है, उसके जरिए यहाँ बयां की जा रही है।
1: आपने कहा कि जब कोई शायर गीतकार बनता है तो जब वो गीत लिखते हैं तो उनका जो अंदाज होता है लिखने का या किसी चीज़ को पढ़ने का, देखने का, बिल्कुल जुदा होता है। अब ज़रा देखिए, उन्होंने कहा, चुपके से ये बात पता नहीं चली और एक छोटी सी रोशनी, जिसको इन्होंने आग कहा है, यहाँ पे आग लगा दिया है और अब कुछ संभाले नहीं संभल रहा। अब किस तरह का इम्तिहान दूँ, मतलब जब भाव अपने पराकाष्ठा पर है, प्रेम का भाव, और कह रहे हैं कि भाई हमेशा वही वाली बात है हृदय में, बातों में, निगाहों में, तो अब इससे बढ़कर कि हाँ, इस हृदय में सामने वाले के लिए बहुत सारा प्रेम प्यार है, इससे अधिक इम्तिहान और क्या दूँ।

0: हमने स्वानंद किरकिरे जी के बोलों को हमने देखा, अभी हमने फैज़ अनवर साहब को देखा, और उसके बाद आपको पता है कई बार हम लोगों ने बात की है, किसकी
1: किसकी?
0: मजरूह सुल्तानपुरी जी की।
1: क्या बात है।
0: वो वाला गीत याद होगा ना, जिसमें संध्या थी और रेत वाली बात कर रहे थे, वो मजरूह साहब ने लिखा था ना?
1: नहीं,
0: याद
1: आया? वो नेहा जी, वो हसरत जयपुरी साहब का गीत था, तुम तो प्यार हो।
0: अरे माफ कीजिएगा, देखिए श्रोता
1: आप बहुत इस तरह की गड़बड़ करती हैं नेहा जी, लेकिन हम बात को सही कर रहे हैं, दुरुस्त करते चले।
0: नहीं नहीं, मैं आपको चेक कर रही थी कि आपको याद है कि नहीं।
1: ये आपका चेक करना कभी बंद होगा कि नहीं?
0: ये आप समझेंगे नहीं, ये बात क्या है असल में।
1: मुझे चेक करने के बजाय मेरी चेकबुक चेक कीजिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदेमंद मेरे लिए होगा।
0: सुदेश्वरता, पता है कई बार कौन किसको चेक कर रहा है पता ही नहीं चलता। बस ये सबसे अच्छी बात है कि सही बात तक हम पहुंच जाएं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी जी।
1: तो देखिए, मजरूह यानी कि जख्मी, जो अपने बोलों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए हमारे दिल को जख्म से भर देते हैं, और ये जख्म इतना प्यारा होता है नेहा जी, क्योंकि इसमें प्यार की बातें होती हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं, उदासियों की भी बातें की जाती हैं, उसकी भी बयानियाँ होती हैं, लेकिन वो जो दुख होता है, वो जो पीड़ा होती है, वो भी बहुत शानदार होती है। लेकिन फिलहाल अभी तो हम पीड़ा की तरफ या उदासी की तरफ नहीं ले जाएंगे, अभी देखने दिखाने की बातें हो रही है कि किसी की एक झलक जब हम देखते हैं, जैसा कि भी पहले गीत में सुना कि किसी की एक झलक देखकर क्या क्या हुआ,

0: भाई, पहली बार जब मैंने इस गीत को देखा सुना, देवानंद साहब, माय गॉड, बहुत हैंडसम नज़र आ रहे हैं। और पहली बार जब वो नंदा को देखते हैं, क्यूट भोली भाली सी, आह, दिल हार बैठते हैं। तभी वो बोल निकले, ऐसे तो ना देखो कि नशा छा जाए। और मोहम्मद रफ़ी साहब, माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे कंठ में उस समय प्रेम का रस भरा हुआ था, तब उन्होंने ये गीत गाया है। ऐसा था क्या?
1: नेहा जी, देखिए, जब रफ़ी साहब की बात होती है
0: जी
1: तो दिल थमसा जाता है और धड़कने बिखरने सी लगती है, क्योंकि वो आवाज़ का जो जादू है, जो नशा है, वो सर चढ़कर बोलता है और हम बिल्कुल खो से जाते हैं। और जिस तरह से शब्द लिखे गए हैं, मजरू साहब के जो शब्द हैं, वो कितने मानी खेज नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम संगीत को नहीं भूल सकते हैं। एस जी बर्मन साहब का जो संगीत होता है वो इतना तरोताज़ा होता है कि जब कभी भी कोई भी गीत उनका हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो बंगाल से, क्योंकि आज हम लोगों ने जितनी काफ़ी बातें की तो बंगाल से जुड़ी हुई बातें रही हैं, तो यहाँ पर भी बंगाल का जो जादू है, जो संगीत में घुला मिला सा दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक अलग सी धुन पिरोना, अलग सी लयबद्धता की जो बात होती है वो सुनाई जब पड़ती है, और उसमें नए नए प्रयोग करके ऐसे गीत की रचना करना, ऐसे संगीत को बनाना कि जो हमारे हृदय को छूते हुए हमारी रूह में उतर जाए, वो कमाल बर्मनदाही कर सकते हैं। तो अब देखिए कितनी खूबसूरत सी बात कही जा रही है, देखिए सुनते हैं।

जब वो कहते हैं कि ये देखिए ये जो प्रेम की बयानगी है कि हम झुक करके खड़े हो जाएंगे, तुम अगर काफिर कहोगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं पे सजदा करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो पवित्र प्रेम का भाव है इसे समझने की ज़रूरत है, और प्रकृति में इस तरह का प्रेम पनपे इसकी चाहत होनी चाहिए।

0: जब ये गाना शूट हो रहा है और गाने के बीच में देवानंद साहब एक ऐसा लम्हा आता है कि वो एक चित्र बना रहे हैं, उस पर मजरूह सुल्तानपुरी साहब लिखते हैं कि ज़रा देखिए ये खुदी से बेखुदी का दौर जब आता है तो जो हंसी से गेशो हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, क्या इंसान इतना बेकल हो सकता है। तो देवानंद साहब जब आगे कहते हैं कि मैं तो आनंद में हूँ, मस्ती में हूँ, मैंने पता नहीं क्या क्या कहा, ऐसा ना हो कि आप उस खेमे में आ जाएं जिस खेमे में मैं हूँ और अपनी बेकरारी कह जाएं मुझसे।
1: बिल्कुल सही बात है। तो ये असर तो देवानंद साहब रखते ही रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको देखेगा तो ऐसा नहीं है कि उसका दिल की धड़कने ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और नेहा जी देखिए, इतने खूबसूरत गीतों का जो ये उपहार था हमारे दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा, ऐसी आशा रखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में अपना प्यार बरसाते रहिए संदेश के माध्यम से। संदेश आपको लिखना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8004926250।
0: तो अब हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का था, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। यह है कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आरडी बर्मन। फिल्म का नाम ए लव स्टोरी 1942।

अभी आप सुन रहे थे गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में, लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी उत्तम सिंह ने। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ, युगल आवाजें पूर्णिमा कुमार सानू की, फिल्म का नाम गोपी किसन।

ये गीत है आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ, आवाजें सोनू निगम, अनुराधा श्रीराम की, फिल्म का नाम ताल।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम को फिल्म ताल में। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में फिल्म चांदनी से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं जगजीत सिंह का गाया ये भजन।

सबरस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास के स्वर में ये गीत। आइए अंत में सुनते हैं आबिदा परवीन की सूफी रचना।

सबरस कार्यक्रम में अभी आप आबिदा परवीन की गाई ये सूफी रचना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने ए आर रहमान

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर

0: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।

0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए।

0: पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit.

0: They said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund IMF projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, released today, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. In sports, the 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। दिफाई तहकीको तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइश परवाज की है। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगु भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने

0: आर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओस के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: भारत और रूस ने आज अक्वामे मुत्तहदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई तावुन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तावुन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इरादा किया। वज़ारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हम्द अस सबा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉ जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा। उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात व वाकयात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर में वाक़ मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर DRDO, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनद को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संग मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हालिया दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बायस बारिश की कमी वाले अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनिनो के मुमकिन असरात पर मुनक़िदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमू बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी।

हथियार इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स की सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इन आजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वो दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा की चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Abhishek. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहाँ जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक

0: सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती है, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है इसकी वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, July 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती

0: है वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी, तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ, सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
2: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा, फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
2: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर।

0: फंगस नहीं आती है और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए,
1: जी
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ही मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अभी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव का संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि

जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पॉन्ड्स है या लेक्स है उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन

0: और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें यह भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश की बात करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात हुई। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटा देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि

0: दिल्ली हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा कहीं, वो सुनिश्चित करना होगा। और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी

0: के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। रात की खामोशियां जब अपने पंख फैलाने लगती हैं, तो दिल की आवाज कुछ और साफ सुनाई लगने लगती है। दिन की हलचल पीछे छूट जाती है और मन उन पलों की ओर लौटने लगता है जिन्हें हम शायद कभी भूलना ही नहीं चाहते। अगर ऐसी ही किसी रात में खिड़की के शीशों पर बारिश की बूंदें दस्तक दें, हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू घुल जाए और दूर कहीं बादलों की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे, तो यकीन मानिए कि यादें भी बिना बुलाए चली आती हैं।

कभी आपने गौर किया है, बारिश की हर बूंद का अपना एक संगीत होता है। कोई बूंद मुस्कुराहट जैसी लगती है तो कभी कोई आह जैसी, और कोई तो ऐसी भी होती है जो किसी भूली हुई याद को चुपचाप जगा देती है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है, वह खत्म नहीं होती, बस यादों का रूप ले लेती है और बरसात उन यादों को फिर से आवाज

लोग कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, वे बस एहसास बनकर दिल में बस जाते हैं। बरसात की रातों में भी अक्सर ऐसा ही लगता है जैसे हवा किसी की खुशबू लेकर गुजर रही हो। खिड़की से आती ठंडी हवा, चाय की हल्की सी भाप और दूर तक गिरती झमाझम बारिश, इन सब के बीच दिल न जाने किसे ढूंढता है। शायद वही जिसने कभी कहा होगा कि बारिश होगी तो मुझे ज़रूर याद करना। और देखिए, बारिश तो हर साल आती है और चली जाती है, मगर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ यादों में ही लौटते हैं। इसी मीठी कसक के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

बारिश का मौसम हमें एक बात बहुत खूबसूरती से सिखाता है कि बादल चाहे कितनी देर बरसें, एक समय के बाद थम ही जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जिनकी रिमझिम कभी नहीं रुकती। कभी किसी की हंसी याद आती है, तो कभी किसी की बातें, तो कभी सिर्फ नाम। दिल उन्हें भूलने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग भुलाने के लिए नहीं, मुस्कराने के लिए याद आते हैं। और तब दिल से बस एक ही आवाज़ आती है, अकेले हैं, कहाँ हो।

ये भीगी रात, ये सुहाना मौसम और उस पर ये घड़ी की सुइयां अब विदा लेने के लिए इशारा कर रही हैं। उम्मीद है कि बारिश की इन फुहारों के साथ संगीत का ये सफ़र भी आपके दिल को सुकून दे पाया होगा। अगर आपके यहाँ कहीं बारिश हो रही है तो उसका आनंद लीजिए, और अगर नहीं हो रही है तो इन गीतों ने आपके मन में ज़रूर भिगोया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शाम, नए मौसम और नई धुनों के साथ। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा ये फिल्मी गाना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पंडित निखिल बनर्जी। आइए सुनते हैं इनका राग रागेश्री में सितार वादन। तबले पुसंगत कर रहे हैं करामतुल्ला खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन राग रागेश्वरी में। तबले पर संगत कर रहे थे करामतुल्लाह खां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत

कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Keralam Chief Minister V.D. Satheesan. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. 9th seed Linda Noskova booked her place in her maiden Wimbledon semi-final with a 6-3, 7-5 win over Belgium's Elise Martins. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।